बड़े प्यारे वचन ने, समझण दी कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एह हर रस पावे जन कोई कोई किते करोड़ां दे विच्चों, नहीं तो छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया, ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है, गुरु वाले बनी है। नहीं तो निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस, बोलो एहो अमृत की आ हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे, ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा, ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया, अमर दे अखरी अर्थ समझो अमार। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत, जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ, जिस जीव दे मुंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो, हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवागमन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा, जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ, गुरु दी पनाह विच आउंदी आ, गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों, ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवागमन मिटे, बोलो आवागमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो, गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो, दास नूं भी सेवक दिओ सेवा दिओ। आवागमन मिटे, बोलो आवा कदों प्रभ सेव, जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया, जदों आप त्याग शरण गुरदेव, आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पीना आण के, ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवागमन मिट गया। इउ रतन जन्म का होए उधार, ए रतन जन्म दा उधार हो गया, एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए, उन्हें मुड़के मुड़ना नहीं, उन्होंने मुड़के किते नहीं आना। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म की बंदगी करने वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया, मैं सतगुरु की हजूरी विच मेरे गुरु की फिलोसफी मुताबिक कह रहा वा कि उन्हां दा आवागमन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है, फिर आना पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां, सिमरन बड़ा करदे हां, जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी, नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं, जिदन मिट गई उदन बन गई, जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं, जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच, उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे, आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने, ध्यान देना है, जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जितया, बाबे ने दो देश नहीं जिते। ए ते साडी बदकिस्मती है कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए, जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए, जे मक्के मदीने गए उथे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के, बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना। तुसी कहिंदे हो नवा दिता टेलीविजन दे उत्ते, रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता, मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

से जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ, कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी। मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धो मैं लिया है। कहिंदे की लिया है? कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली, खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों, नीवां पन लै लिया उहदे कोलों, निम्रता लै ली, झोलियां भर लईयां मन दे के। अज जदों मैं कई बार पढ़दे हां ना, तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो, मन नीवा ते मत उची। इतना हो गया जी, उल्टी गल चल गई, हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगदा। ध्यान दिओ अपने अंदर, झाती मार के वेखो, मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े हां, मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं। मन दे विच ते जिन्नू भी वेखदे कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा, मैं इहदे नाल चंगा। मन दे विच मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे। मगर कितना दी इह गल हो गई साडे नाल वापर गई, असि मन करके हंकारी बन गए, मत करके नीवे हो गए। मत इन्नी नीवी हो गई भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं। सिख सिख दा की आ, बोलो जी की आ? जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा? इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे? दूसरे भरा नूं ते असीं मन्निया है ना कि यह मेरा भरा है, मन करके मन्निया ना। यह ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई, एक प्यो दी औलाद आ। जिन्हें जिन्हें वाटे चो अमृत पीता वा, कमाल दी गल आ, उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ, माता साहिब कौर आ, उसे प्यो दा पुत, उसे मां दा पुत, एक दूसरे दा वैरी बनिया। कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बाहर ना चलिया जावां, सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे, बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया, सो तनखाइया दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने, तनखाइया नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे। ध्यान दिओ, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े, ओ कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा, प्रचार सकदा, ओ तनखाई है। जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है, जिहड़ा सिख सिख दा मुंह खड़ावे सो तनखाई है। मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असीं सारे ही तनखाई है। इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु, कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के, हम बारक मुगद आण, हम बारक

अमृत छका के की दृढ़ करोना है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु कृपा करे मेरा सतगुरु साहब चित आवे। जदों किते गुरु दे प्यारे धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह दे कोल जाना ते एक महापुरुष कथा करदे कहिंदे गुरु अमरदास महाराज पातशाह जिहदे सिर ते हथ रखना उहनूं कहना तेनूं साहिब चित आवे। तेनूं साहिब जिहदे उत्ते कोई नहीं, थले वाला नहीं कोई। साहिब दा मतलब हुंदा जिहदे उत्ते कोई ना होवे, जिहदे तों उत्ते होर कोई ना होवे। साहिब आपां कहिंदे ही उहनूं ते मेरे साहब कहिंदे ने कहना तेनूं साहिब चित आवे। मेरा गुरु नानक कृपा करे मेरी हाथ जोड़ के बेनती, अज रात दा आखरी दीवान आ, कल नूं मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दा अमृत दी दात गुरसिखां विच वंड के गुरु गोबिंद सिंह साहब दी सेवा संभाल निभा के छेती तो छेती दस रहा ने चले जाना है। मेरा सतगुरु कृपा करे रात दे दीवान विच मेरी भी अरदास है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे चरणां च। मेरे सतगुरु इस स्थान ते जिन्नियां आउंदियां संगतां, वैसे ते सारे संसार नूं चेते आवे, इह जिहड़ियां तेरियां प्यासियां भुखियां रूहां अमृतधारी रूहां, सतगुरु इन्हां सारिआं नूं साहिब चित आवे, सारिआं नूं साहिब चित आवे। इह उठदे बहिंदे जपिआ करन सतनाम श्री वाहिगुरू। सवेरे अमृत वेले केसी इशनान करिओ, स्वच्छ कपड़े पायो, इक मन विच भुख लिके आयो कि मैं अमृत दी दात लैण चलिआ, मेरी इह जिंदड़ी ए जिहड़ा मसला देवी देवतियां दा हल नहीं होया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, जिहड़ी चीज उहनां नूं नहीं मिली, ब्रह्मा नूं नहीं मिली, विष्णु नूं नहीं मिली, शिवजी नूं नहीं मिली, सारा संसार उहनां दी पूजा करदा है मगर इस चीज तों उह वी भुखे रहे, ते मेरा गुरु नानक मेरे ते टुटा है। अज मैनूं उह दात मिलण लगी जिहड़ी देवी देवतियां नूं नहीं मिली, ते चा दे नाल अमृत लैण आया। जिन्हां ने कोई अवग्या कर ली या भुल कर ली उह वी बख्शाउण आयो, जिन्हां दी किसे दी कोई सर्जरी होई है उह वी आण के पंजां प्यारियां तों फिर अपने सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दे नाल गांडनहार गोपाल टूटी।

पारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देन वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें आख्या, पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या, मेरी ते हुण भुख ही कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

करने जोग गुर परमेश्वर खै पी होग। ते साहब ने उत्थे एक शब्द कह कहन लगे कहो नानक प्रभ ए जनाई। इस तुक वल ध्यान दिया जे, इत्थे शब्द नहीं है नहीं वरत्या कि गुरु ने मैनू गल जनाई। हजूर कहिंदे ने कहो नानक प्रभ ए जनाई, प्रभ का अर्थ प्रभु करांगे वाहगुरु करांगे, कि मेरे परमात्मा वाहगुरु ने मैनू एक गल की सोझी दिती। की सोझी दिती? कहन लगे बिन गुर मुक्त ना पाईऐ भाई। प्रभु ने गल समझा दिती कि गुरु तो बिना मुक्ति नहीं, गुरु ही तेरा मुक्ति दाता है। हुण सवाल उठिया भी गुरु कौन हुंदा है। ते एक बेनती करा, असल विच बाणी विच गुरु गुर सतगुरु ते सतगुर शब्द बड़ी वारी आया है। हुण हजूर नूं पुछिए भी गुरु कौन हुंदा है। ये दो अखरां नाल बनिया है। असल विच गुरु शब्द ही ऐसा भावपूर्त है कि अपने आप विच गुरु शब्द बड़ी वड्डी रमज समो के बैठा है। जिहड़ा असीं शब्द गुरु पढ़ने हां, इहदी उत्पत्ति इह शब्द की होंद आई है संस्कृत की ग्रीक धातु विचों इह पैदा होया है। दो अखरां नाल इह शब्द बनिया है, एक है गो ते दूसरा है रूह। गो का अर्थ अखरी हुंदा है हनेरा, ते रूह का अर्थ हुंदा है चानण। गुरु का अखरी अर्थ ही यह है कि जिहड़ा साडे अंदर दे हनेरे नूं खत्म करके चानण का चिराग बाल देवे, शब्द का दीपक बाल देवे, असल विच ओ गुरु है। ते अगली बेनती करा, हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए महाराज कि केड़ा गुरु हुंदा है, गुरु की परिभाषा की है। मैं तीन चार प्रमाण दे के इस तो अगे तुरना अमृत दे विषय वल, क्योंकि यह गल नखेड़नी अत लाजमी है। असी भरम कई सज्जन पा लेंदे ने कि जो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच कहे ये साडे गुरु लई कहे होणगे, ते शब्दां दी लोक दुर्व अर्थ अपने ढंग नाल करके यतन करदे ने कि शब्दां दे राही सिद्ध करिएगी जो गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा है साडा ही गुरु इस तरह दा। हजूर नूं पुछिया ते दातार ने गुरु की परिभाषा विच पहला बचन कहा, कहन लगे जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। कि जिस नूं मिलन दे नाल अंदर नूं आनंद मिलदा होवे, अंदर नूं खेड़ा मिलदा होवे, ते आनंद दा अखरी अर्थ पिछली बारी भी अर्ज कीता सी, आनंद दा अर्थ केवल कुछ समय दी वक्ती खुशी नहीं, आनंद दा अर्थ थोड़े समय दा अंदर दा खेड़ा नहीं, असल विच आनंद दा अर्थ है वे कि जदों गुरु किरपा करके अंदर दे औगुणा नूं कट देवे, अंदर ज्ञान दा सुरमा दे देवे, ते ओदी किरपा नाल शब्द दी कमाई करके इन्ना कु दम आ जाए कि बंदे दी जबान विचों निकले हुए शब्द लोक ते परलोक सच्चे हो जाण, सच जाणो, इस अवस्था नूं आनंद किया जांदा है। साहिब ने कहा कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। केड़ा आनंद? उत्थे हजूर ने बाणी विच कह आनंद आनंद सब को कह। अगली तो के आनंद गुरु ते जाणिया कि गुरु नूं मिलके आनंद हुंदा, गुरु है ही ओ जिन्हों मिलके आनंद आवे। हुण इत्थे आनंद दे अर्थ दो चरिया खुशी खुशी नहीं। मैं फिर बेनती करदा, मान लो कोई मनुख गुरु नूं मिलदा है, आम दे धारी किसे नूं, ते उहदे घर पुत्तर नहीं, रब ने मेहर कीती पुत्तर हो गया, कहिंदा देखो जी जिहड़ा बाणी भी शब्द आया गुरु नूं मिलके आनंद हुंदा है, मेरे घर पुत्तर आया ते आनंद आ गया, मेरे घर पैसे आए ते आनंद आ गया। नहीं गुरमुखो, आनंद की परिभाषा केवल पुत्र धियां समगरी जां ऐशवर्ज नहीं, आनंद असल विच अंदर दी एक अवस्था है जिहड़ा गुरु तो मिलता है। साहिब ने शब्द वरते आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जाणिया, जाणिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल वेख कटे। गुरु होवे जिहड़ा किरपा करके अंदर दे पाप खत्म कर देवे, कर किरपा किल वी कटे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा। गुरु ओ है जिहड़ा बंदे दे अंदर दे मोह नूं तोड़ देवे, अंदर दियां वकारां दियां तंदां तोड़ देवे, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। साहिब कहन लगे कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरु ते जाणिया। किन्ने असल विच आनंद देवे कि अंदर दे पाप खत्म हो जाण, अंदर ज्ञान दा चानण हो जाए। मैं बेनती कर रहा कि गुरु कौन है। साहिब

मैं मूर्ख कर ना जाय, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई।

मर्जी ते परमात्मा दी अपने ते बस विच नहीं और ना ही अजे तक कोई मौत नू रोक पाया ते ना ही मौत नू कोई रोक पाएगा। खैर जो मैं बेनती कर रहा सां कि मौत दे संबंध विच गुरु बाणी दे अंदर वार वार जिक्र आया जिसनू मौत ध्यान विच आ जाए मौत चेते विच आ जाए वो पापां अपराधां तो बच के गुरु दी शरण विच आ जांदा है अपने जीवन दे सुधार हित ते जे पहला गुरु चेते विच आ जान मौत बाद विच चेते आवे ते फिर गुरु चुक के इनू मौत चेते करवा देंदे ने कि तैनू मरना पैना है ते जे मरना पैना है ते फिर पाप अपराध क्यों कर रहे हैं जे मरना ही पैना है ते फिर दोष क्यों कमा रहे हैं। मौत चेते विच नहीं गुरु चेते विच नहीं ते मनुख नचिजक हो के पाप भी कमाई जांदा है अपराध भी कमाई जांदा है दिन पर रात कमाई जांदा है केड़ा मरना जाना सी गवांडी ने चला गया मेरी ते पक्की एटे थी मेरा ते पक्का टिकाणा ही। तो खैर भगत जी कह रहे ने मलक जे कन्नी सुनींदा कन्ना दे नाल सुन रहे सां अज फलाने दे घर मौत आई कन्ना दे नाल सुन रहे सां और लंबे समय तो सुन रहे सां पर समझ उदों आई मुंह दखाले आए जद मौत राणी ने मुंह दे उत्तों कुंड चुक के दरवाजा खोल के आण दीदार दिते। ते मैं एक बेनती होर करदा चला सूझवान तजर्बेकार सज्जन इस तरह कहिंदे ने कहिंदे ने कि बंदे दी जिंदगी दे अंदर एक वार अख जरूर खुलदी है अख खुलन तो मतलब इनू एक वार जिंदगी दे मोड़ दे उते किसे ना किसे मोड़ दे उते होश जरूर आउंदी है इनू समझ जरूर आउंदी है किसे किसे विरले नेमी प्रेमी नू समझ आ जांदी है कथा करके जां कथा सुन के कीर्तन करके कीर्तन सुन के बाणी पढ़ के बाणी सुन के संगत करके किसे नू ते समझ गुरुद्वारे आउन तो बाद ए आ जांदी है कथा विचार सुनन तो बाद ए समझ आ जांदी है कि मौत ने आउना है ते मैं अपने जीवन नू सुर ताल दे अंदर तरतीब दे अंदर कर लवां ते मौत आउन तो पहला पहला कर लवां मौत ने आउना आउना है। जो ना कथा कीर्तन सुन के जागे ना बाणी पढ़ सुन के जागे उदे वास्ते कोई उपदेश कारगर सिद्ध ना होवे कोई कथा कीर्तन कारगर सिद्ध ना होवे उदी फिर अख उदों खुलदी है जदों मौत दरवाजा खोल के उदे अंदर आण के उनू दीदार देंदी उदों दी अख खुलदी है। पर मैं बेनती करां जे उदों अख खुली फिर ना खुली दे बराबर है उदों होश आई ना आई दे बराबर है क्योंकि हुण कुछ कर सकण दा समां साडे पास बाकी नहीं है। अगर कथा कीर्तन सुन के गुरबाणी पढ़ के संगत विच बह के कोई विचार शब्द दी करके अज होश आ जाए कि मरना पैना है फिर ते साडे पास समा बाकी अपना सुधार कर लवांगे अपने लगे हुए दाग दोष जेड़े आप ही अपने मन दे कपड़े ते लाए ने उन्हां नूं धो लवांगे ते जे समझ ही उदों आई कि जदों समा ही खत्म हो गया ते फिर समा कोल होना नहीं फिर करना भी चाहवांगे कर नहीं पावांगे। फरीद साहब जी कहन लगे मलक जे कन्नी सुनींदा मुंह दिखाले आए ओ जो मौत दा फरिश्ता कन्ना दे नाल सुन रहे सां ओ एक दिन अपने घर दे अंदर आण के दीदार दे देंदा जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डां कूकड़काए। कहन लगे फिर एदे विचों जिंद नूं कढ लिया जांदा है प्राणा दी माला बिखर जांदी सवास रुक जांदे दिल दी धड़कन खत्म हो जांदी नाड़ां दे अंदर गर्दिश कर रिहा खून उहनूं वी रुकण दे उत्ते मजबूर होना पैंदा है ओह वी पाणी दा रूप बन जांदा है पर कदों जदों मौत दा फरिश्ता आण के घर दे अंदर खड़ा हो जांदा है हड्डां कूकड़काए इहदा मतलब मौत अंदरों पैदा होई। जे मौत ने किधरे बाहरों आउणा हुंदा असी कोई ना कोई जोर यतन प्रयतन जरूर कर दे कि मेरे घर दे अंदर मौत ना आवे। चलो जे मौत ने आउना ही है ते फिर गवांडियां दे घर विच आ जाए मैं ते बचिया रहा मेरे घर विच ते ना आवे ते खिमा चाहवांगा उम्र भावें 100 साल दी हो जाए शरीर बिल्कुल जीरण कमजोर पुराना बिल्कुल बोधा हो जाए पर बंदा फिर भी चाहुंदा है कि अजे जीवन होर चाहिदा है मौत दी मंग फिर भी नहीं है ਭਾਵੇਂ 90 साल ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ

0: भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कह रहे ने रज ना कोई जीविया कूड़े पर वासे। फिर हर मरण वाले दे कन्ना विच जाके एक प्रश्न करो के बाबा 90 साल 95 साल दी उम्र भोग के जा रहे हैं खुशी खुशी जा रहे हैं जा जान दे उते अफसोस है। हजारां विचों किसे विरले दा जवाब आएगा के जान दे उते कोई अफसोस नहीं है, इतराज नहीं है, चलो जाना से जुबानों कहना होर गल है, मन दी ओदी भावना नोट करो, मन नूं पढ़ो, मन ही कहेगा कि अजे जीवन चाहिदा है, अजे अखां होर वेखना चाहुंदियां ने, जुबान बोलना चाहुंदी है, दंद चबाउणा चाहुंदे ने, असी खाना चाहुंदे आ। भावे मेदा पचाउण तो जवाब दे गया, खान दी तमन्ना बाकी है, भावे वेखण तो अखां जवाब दे गईयां ने पर वेखण दी तमन्ना बाकी है, भावे शरीर चलन तो जवाब दे गए पर चलन की तमन्ना ते खत्म नहीं हुई, वो तमन्ना अजे बाकी है, गला बोलन तो जवाब दे गए बोलन की तमन्ना बाकी है, विषय विकारां वालों शरीर हार चुका है, साथ देना छड़ गया है, पर विषय विकारां दे भोगन की अजे तमन्ना बाकी, खिमा जावांगा तमन्ना ए लालसा बाकी है। मर के कोई राजी नहीं, जीवन सारे लौटदे ने, मर के कोई भी राजी नहीं है, किसी अखीर ते पहुंचे हुए मनुख नूं प्रश्न करके वेखो, यही कहेगा कि जान दी अजे तमन्ना नहीं है, अजे जीवन चाहिदा ते होर जीवन चाहिदा, भावे शरीर दा बेड़ा जर्जरा कमजोर पुराना हो जाए, इहदे अंग अंग दे अंदर रोग होण, अखां दर्द नक दर्द कन्ना तो सुने ना लत्तां तो चलिया ना जाए, बाहां कुछ करन दी समर्था ना रखन, ना बोलिया जाए ना वेख्या जाए, पर तमन्ना बाकी है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बचन होर भी कहा है, वो कहिंदे ने अन्ना बोला पिंगला तन थका मन दह दिस तावे, मन अजे दौड़दा है, मन शरीर नूं छड्डन वास्ते तैयार नहीं है, पर परमात्मा दी नेत दे मुताबक भावे असी राजी हां या नहीं राजी, जदों मौत आ जांदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है, भावे हस के छड्डदी है रो के छड्डदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है। मैं एक वक्त 2001 दी घटना नूं बयान कर रहा, मैं महीने को वास्ते आया सां गलीड़ा रोड दे उते, एक बजुर्ग माता मेरे कोल आई, उन्हें एक छोटा जिहा बच्चा अपनी उंगली दे नाल लाया, तकरीबन 5-7 साल दी बच्चे दी उम्र होनी है, मैनूं उह घटना बड़ी चंगी तरह याद है। वह माता मेरे कोल आई, ज्ञानी जी अरदास करवाउणी है ते करवाउणी वी तुहाडे कोलों है। मैं कहा माता मैं अरदास करदा नहीं हां, मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है, ग्रंथी सिंघां नूं संपर्क विच लो, अरदास करवाउणी नहीं तुहाडे कोलों। पुछिया मां अरदास की, कहण लगी इह मेरा पड़पोतर है, पोतरे दा भी पुत्तर इह पड़पोतर है, अरदास करो कि मैं इस पड़पोतरे दा व्याह वेख के ते फिर मरां। मैं क्या माता इह अरदास ते होणी नहीं, अपना व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, सखियां सहेलियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, धीआं पुत्तरां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया, पोतरियां पोतरियां दा व्याह वेख्या तां मन नहीं भरिया। एक पड़पोतरे दा व्याह वेखण तो बाद तमन्ना ने रुकना नहीं है, वासना ने रुकना नहीं, जीवन दी लालसा है, मरण वास्ते कोई राजी नहीं हुंदा। 95 साल दी आरजा हो जाए ते बंदा 95 साल दे अंदर भी जन्मदिन दी अरदास करांदा है, 95 साल पहला घटना घटी सी जन्म वाली, 95 साल पहला, ओ 95 साल पहला जेड़ी घटना घटी सी ओ दिन ते चेते करदा है, जन्मदिन दी अरदास करांदा है, जन्मदिन मनांदा है, हालांकि ओ 90-100 साल पहला दी घटना है। मौत दा भरोसा ही नहीं है, 95 मिंटां बाद आ जाए, सकिंटां बाद आ जाए, हुणे आ जाए, पल बाद आ जाए, पर मौत दा नां कन्नां दे अंदर पैंदिआं सार अंदरों हिल जांदा है, कंब जांदा है, नहीं नहीं नहीं अजे ते जीवन दी तमन्ना है, अजे मैं मरना नहीं चाहुंदा। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे जो ताकतवर देवता है मौत ए जद आ जांदा है ते फिर ए गले नूं दबा देंदा है, सवासां दी माला बिखर जांदी है, इहनूं नाल चलना पैंदा है। इस तों अगे बाकी दे बचे श्लोक इहदी व्याख्या आउण वाले कल नूं मैं
1: लंघन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया

ठाकुर प्रभु तुम्हारी शिष्य राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

भगत फरीद साहब जी का उपदेश कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उते खड़ा होके मंग करन वाला रब दा मंगता रब दा जाचक दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे और मंग भी करे केवल इको ही परमात्मा तेरे मिलाप दी चाहना है और कोई चाहना बाकी नहीं बची उन्हों कह देंदे ने दरवेश दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पाता। कहन लगे आम मनुखता दे अंदर विचरदिया होया नजर मैनू ए आया कि मनुखा दे नाम दे नाल लफज ते दरवेश जुड़िया या दरवेश लफज जोड़िया गया पर उन्हां दी तरजे जिंदगी नूं वेखो जीवन दी चाल नूं वेखो ते ओ आम दुनियादारां वाली चाल उन्हां दे जीवन विचों नजर पैंदी है। इत्थे मैं एक दो बेनतियां आप संगत दे सन्मुख करदा चलां अगर गुरु साहिबाना नूं भगत जना नूं आपां बाहरों वेखीए ते बाहरों वाकई दुनिया वर्गी चाल है कोई फर्क नहीं है और भगत दी चाल एक दरवेश दी चाल बाहरों रहनी भी आम दुनिया वर्गी चाहीदी है पर अगर अंदरों वेखो ते अंदरों नरोल खुदा दे नाल मिले हुए खुदा वर्गे नजर पेंदे ने अगर अंदरों वेखो। बाहरी तौर दे उते गुरु साहिबाना तो मैं गल प्रारंभ करा बाहरी तौर दे उते वेखो असी भी गृहस्थी ते साडे दसे दे दसे गुरु साहिबान गृहस्थी अगर गृहस्थ मार्ग नूं अख्तियार नहीं कीता ते उमर दे तकाजे दे नाल धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी ने गृहस्थ मार्ग नूं प्रवान नहीं कीता इस तरह नहीं कि उन्होंने हृदय विचों प्रवान नहीं कीता उमर दे लियाजे दे नाल उस मार्ग नूं अपना ना सके। तकरीबन पौने अठ साल की उम्र के अंदर ते ज्योति जोत समा जांदे ने अठवें हजूर गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज और फिर मैं एक होर भी बेनती करा तकरीबन 22 साल का लम्मा समा चार उदासियां दे अंदर चार फेरियां दे अंदर तकरीबन 22 साल का लम्मा समा धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी घरों बाहर भी रहिंदे ने और आए भी जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते ने ते फिर ए भी कोई नहीं कह सकदा कि धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे मुबारक पवित्र हिरदे दे अंदर कोई मैल का अंश बाकी सी मैल उन्हां दे नेड़े तेड़े नहीं है वासना उन्हां दे हृदय विच बाकी बची नहीं है कोई आश कोई तरंग कोई उम्मीद उस पवित्र हिरदे दे अंदर नहीं है उन्हां दे कोल इस मार्ग नूं अपनाउण वास्ते समा भी नहीं। मैं अज जिहड़ियां बेनतियां करनियां ने या गुर इतिहास विचों ते या गुरबाणी नूं आधार बना के मैं अपने कोलों कुछ भी कहण दा यतन नहीं करना क्योंकि विशा ही बड़ा पेचीदा विशा है। तो खैर गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे कोल समा ना हुंदिया होया वी फिर भी उन्होंने इस मार्ग नूं अख्तियार कीता मार्ग नूं अपनाया क्यों अपनाया क्योंकि आउण वाले कल नूं जो लोग मेरे मगर मगर चलदे आ रहे ने उन्हां नूं इह कहण दा समा ना मिले कि गृहस्थ मार्ग माड़ा हुंदा है गृहस्थ मार्ग बुरा हुंदा है उन्हां नूं इह कहण दा समा मिले ना क्योंकि अक्सर असी चलने अपने वड्डियां वडेरियां दे चिहन कदमां नूं वेखदे होए अक्सर आपां चलने जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने गुरु साहिबाना ने पैगंबर जना ने जिथे कदम टकाए ने उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनाउंदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो श्री राम ते श्री कृष्ण जी दी गल करके चल रहा है अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है ते ओ गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध दी महात्मा बुद्ध इस तरह चलदे रहे महात्मा बुद्ध इस तरह करदे रहे फिर ओ जीवन दी चाल चलनी शुरू कर देंदा है। अगर कोई जैन मत दा धारनी बन के चल रहा है ओ यही एग्जाम्पल देंदा है कि साडे महावीर जैन तकरीबन अज तो 2500 साल पहला कह लगे वो आए ते उन्होंने इस तरह दुनिया दे अंदर मृत मंडल दे अंदर आके लोकां नूं उपदेश दिता इस मार्ग दे पांधी बन के चले ते जैनी कहिंदे ने असीं तां चल रहे
ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ

0: करना चाहोगे ते सिख दे कोल यही जवाब होएगा ना कि असीं गुरु नानक साहब जी दे बनाए मार्ग ते चलांगे। होर ते कोई जवाब नहीं है ना कि गुरु नानक साहब जिस मार्ग ते चले असीं उस मार्ग ते चलांगे। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ग्रिस्त दे मार्ग दे अंदर भी चले ने। ग्रिस्त दे मार्ग तो उपराम होना गुरमत दा असूल भी नहीं ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा बख्शिया सिद्धांत भी नहीं। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड के चलन दा यतन कर रहा है मैं ही कहांगा वो पहले कदम दे उते पटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उते थिड़क गया है। क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद यह मार्ग अपनाया है असी इस मार्ग नूं नफरत करनी, असी इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड देना ते एक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, ये साड़ी अपनी अज्ञानता या साड़ी अपनी भुल है। गुरु पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, गुरु गोविंद सिंह पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, दसे गुरु साहिबान ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रह, जिन्हां भगतां दी बाणी ग्रिस्ती होए ने, बाबा फरीद साहब जिन्हां दे सलोकां दी व्याख्या मैं लड़ीवार तुहाडी अरज कर रहा, बाबा फरीद साहब जी दे भी 6 लड़के ने ते 2 लड़कियां ने, 8 संताना नूं जन्म दिता है भगत फरीद साहब जी ने, जिन्हां दी बाणी आप प्यार सहित रोज रोज सरवण कर रहे हो। फिर गुरु नानक साहब जी ने सानू ग्रिस्त मार्ग दा साधु बनाया है, ग्रिस्त तो त्यागी होके साधु बनन दा उपदेश नहीं दिता। उन्हें आख्या ग्रिस्त दे विच रह के साधु बन, मैं इस मार्ग नूं जन्म दे रहा। तो खैर अगर बाहरों वेखीए गुरु साहिबाना नूं ते बाहरों उन्हां दे घर दे अंदर सुपत्नी, उन्हां दे घर दे अंदर तियां दा जन्म, उन्हां दे घर दे अंदर पुत्रां दा जन्म, उन्हां दी जेब दे अंदर साडे नालों धन ज्यादा, उन्हां दा घर बार साडे नालों चंगा, उन्हां दे घर दे अंदर साडे नालों पदार्थ भी वधीक, भावें संगतां ही लियांदियां ने पदार्थ भी वधीक, माया वध परिवार कुटुंब कबीला मैल माड़ियां दे अंदर वसदे होए गुरु साहिबान नजर पैणगे। अगर बाहरले तौर ते वेखो, अगर अंदरों वेखो किसी दे कोल इन्नी बारीक बीनी बारीक निगाह होवे जो पातशाह नूं अंदरों वेख सके ते अंदरों वेखोगे उह नरोल परमात्मा दे वर्गे नजर पैणगे। बाहरों संसारी नजर पैणगे, अंदरों निरंकारी नजर पैणगे। बाहरों वेखोगे मायावी नजर पैणगे, अंदरों वेखोगे ते माया दे पति खुदावंद करीम दे नाल जुड़े नजर पैणगे। मैनूं भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी दा एक बचन चेते विच आउंदा है, ऐलानिया कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, फारसी दा लफज फरजंद, फरजंद कह दिंदे ने पुत्रां नूं, जन जजे दे पैर हेठ बिंदी ला के, जन जन दा मतलब औरत, ते जे बिंदी ना लाओ इकला पढ़िए जन, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। इथे जन दा मतलब है सेवक, पर जिथे गुरबाणी दे अंदर आउंदा है जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर, इथे जन ते जन दा मतलब हुंदा है औरत, फारसी दा लफज है। भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, गुरु साहिबाना नूं वेखो बाहरों बाहरों ते तुहानू नजर पैणगे कि उन्हां दे कोल जन वी है, जन दा मतलब औरत, उन्हां दे कोल फरजंद ने, फरजंद दा मतलब उन्हां दे शहजादे उन्हां दे साहिबजादे। पर कहन लगे दर हकीकत बा खुदाए खेसतन, कहन लगे हकीकत उन्हां दी ए नहीं है जो उन्हां नूं बाहरों वेख रहे हो। ते भाई नंद लाल साहब फिर उन्हां दी हकीकत है कि हकीकत विच नजर आ रहा है कि परिवार है, कुटुंब है, कबीला है, तियां ने, पुत्र ने, धन है, दौलत है। तुसी कह रहे हो सतगुरु साहिबाना दी ए हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं। ते फिर हकीकत दे अंदर की, अगली पंक्ति विच भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, अगर कोई उन्हां नूं बारीक बीनी दे नाल अंदरों वेख सके ते अंदरों नरोल खुदा वर्गे नजर पैणगे। दर हकीकत बा खुदाए खेस तन, अंदरों रब वर्गे नजर पैणगे। अज दे महावाक दे अंदर भगत जी कहिंदे ने फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी, कहन लगे रब दे दर दा अगर दरवेश बनना है ते सौखी कार नहीं है, कह लगे गाखड़ी। गाखड़ी का मतलब बड़ी कठिन खेड है, आम खेड नहीं है। जितनी मंजिल महान होवे उस मंजिल की प्राप्ति वास्ते साधना भी उन्नी महान करनी पैंदी है। अगर पदार्थ तुच्छ है, मंजिल तुच्छ है, तो उहदी प्राप्ति वास्ते साधना भी तुच्छ दी करनी पैंदी है। आम साधना आम मेहनत करन तो बाद ओ मंजिल ओ पदार्थ हाथ विच आ जांदा है, क्योंकि पदार्थ की कीमत बड़ी घट है। ते पदार्थ जिस पदार्थ की कीमत थोड़ी उहदी प्राप्ति वास्ते उन्नी मेहनत भी थोड़ी। जिहड़ा पदार्थ अपने आप दे अंदर महान है, जिहड़ी मंजिल अपने आप दे अंदर महान है, महान मंजिल की प्राप्ति वास्ते प्यारियों मेहनत भी महान ही करनी पैंदी। आम मेहनत दे नाल गल नहीं बनदी। अगर किसी ने दो अखर पढ़ने हो ना, ए बी सी डी चार अखर पढ़ने हो ना, वो एक अद्धे दिन दे अंदर सीख सकता है। अनजान तो अनजान बंदा भी सीख सकता है, पर किसी ने पढ़दियां पढ़दियां डॉक्टर की डिग्री लेनी या इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उन्हों ते एक दिन की मेहनत दे नाल डिग्री नहीं ना मिलन लगी। उन्हों ते एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना ही पैना है। उन्हों एक मेहनत साधना दे दौर विचों दी निकलना पैगा, क्योंकि उदी मंजिल महान है। परमात्मा सब तो महान है, श्रेष्ठ है, ते परमात्मा दी प्राप्ति वास्ते फिर सानू एक मेहनत दे दौर विचों दी गुजरना पैंदा है। ते ओ मेहनत दा दौर भी बड़ा कठिन है, आम नहीं है। असी करदे की आ, रब दी चाहत वास्ते अपने तन नूं धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोर लैने आ, ते मन साडा धर्म दे मार्ग दे अंदर तुरदा नहीं है। फिर मैं बेनती करा, तन नूं धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोर लैने आ, ते मन साडा धर्म तो बागी हुंदा है। मन नूं असी धर्म दे मार्ग दे उत्ते तोरदे नहीं। धर्म की दुनिया के अंदर तन की साधना नालों करोड़ गुणा अगे है मन की साधना। और फिर मैं बेनती करा, गुरबाणी नूं पढ़ के वेख लो, एक ओंकार तो लैके अखीर तक जिहड़ी गल चलती है ना गुरबाणी के अंदर, वह मन की चलती है। तुसी बदलना अपने मन नूं है, बदले हुए मन वाले का नाम बनता है गुरमुख। हुण एक मनमुख होवे एक गुरमुख होवे, ते दोनां दे शरीर नूं पैरलर बराबर बराबर खड़ा करके वेखो, तुहानूं शरीरक बनतर दे अंदर अंतर पएगा, नजर आएगा भई इहदे अंदर कोई फर्क है, इहदे अंदर कोई फर्क है। दोवां दे अंग प्रतंग तकरीबन बराबर ने, दो ही नेत्रां दा मालक मनमुख है, ते दो ही नेत्रां दा मालक गुरमुख है। एक जीवा, दो पैर, दो कान, नक, मुंह, मथा, चमड़ी, शरीर, सब कुछ मनमुख दे पास है। यही अंग प्रतंग सारे दे सारे एक गुरमुख दे पास ने। बारों अंतर की है? बारों कोई अंतर नहीं। हां, कत काठ का अंतर ते गुरमुख मनमुख दे अंदर हुंदा है, ते वो गुरमुख मनमुख होण करके नहीं, उते आम किसे दा कद छोटा, किसे दा वड्डा, किसे दी चमड़ी दा रंग काला, किसे दा चिट्टा, ए फर्क आम फर्क है। बेनती मैं ए कर रहा सा कि मन जदों अंदरों बदलदा है, ते मन दी दशा बदलन दे नाल तुहाडे नां दे नाल एक लफ़ज़ जुड़ जांदा है, ए बंदा बड़ा गुरमुख है। जदों तुहाडा मन बदलदा है ते अंदरों नां बदल जांदा है, लोकां दे अंदर नां प्रचलित हुंदा है, ए भगत है, ए दरवेश है, ए फकीर है, नां बदलदा है। और ना बदलदा कदों है? जदों पहला साडा मन बदलदा है। तुहाडे सामने मैं इतिहास विचो एक होर बेनती करा, जिस तुलंबे नगर दे अंदर चलदे चलदे धन श्री गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी पहुंचदे ने, तुलंबे नगर दे अंदर रहिंदा है एक शख्स, इहनूं लोक ना करके बुलाउंदे ने सज्जन ठग, क्योंकि ठगी करना इहदा कम है, ठगी करना इहदी किरत है, ये करदा है ठगियां, राह मार है, लुटदा है, सेवा करदा है, लोकां नूं मार देंदा है, मुका देंदा है, ते उन्हां दा माल असबाब लुट के अपने घर विच रख लैंदा है। लोक रोकदे ने, बाबा इधर ना जाए, इधर एक सज्जन ठग नाम दा आदमी रहिंदा है, जो किसे नूं बख्शदा नहीं है, ठग ही लैंदा है, मार ही देंदा है। पर जिस दिन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दी संगत होई, उस दिन तों बाद ते ओह सज्जन ठग नहीं रहा, सज्जन गुरमुख बन गया। पर हुण सज्जन दा कद ते नहीं बदलिया, ना उहदा चिहन चक्कर बदले, ना अखां बदलियां, ना चमड़ी दा रंग बदलिया, ना नक्शो निकार बदले। बदलिया की है? सज्जन अंदरों बदलिया। अंदर दी बदलाहट दा ना ही मनमुख है, अंदर दे बदल जान दा ना ही गुरमुख है। इस बेनती नूं बड़े ध्यान नाल समझ लेना, अंदर बदलन करके ना ठग है, अंदर बदलन करके ना सज्जन है। अंदर बदलन करके लोग चोर कह देंदे ने, अंदर बदलन करके लोग साधु कह देंदे ने, जो अपने अंदर नूं बदलदा है। जिन्हों आपां दरवेश कहने आ, ओह वी उहनूं ही कहना चाहीदा है जिहदा अंदर बदलिया होवे, जिहदा अंदर सुधरिया होवे। मैं फिर बेनती दोहरा रहा, गल आरंभ कीती सी कि धर्म दी दुनिया दे अंदर तन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है, ते धर्म दी दुनिया दे अंदर मन दा प्रवेश कर जाना एक होर अर्थ रखदा है। तन करके धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने, मन करके धर्म कबूल लेना ते धर्मी बन जाना एक होर मायने निकलदे ने। कोई तन दे उत्ते तोती ला लवे, मथे दे उत्ते तिलक सजा लवे, गल दे अंदर तेरे धागे दा जनेऊ पा लवे, ते गीता दे 18 अध्याय विचों ओ गीता दा एक भी श्लोक ना मन्ने, ओ बाहरों दिसेगा हिंदू है, अंदरों ओ हिंदू नहीं, क्योंकि गीता दे श्लोक नूं मनदा नहीं है। कोई मुछां कटवा लवे, दाढ़ी रख लवे, हाथ विच तस्बीह रखे, कुरान दी तलावत करे, रोजे रखे, चलिए कटे, बाहरों वेशभूषा तो नजर पेगा, सुन्नत होई होवे कि यह मुसलमान है, पर जो कुरान दी किसे आयत नू नाल लेके जीवन दे अंदर चाली नहीं रहा, ते फिर वह विखावे दा मुसलमान है, सच्चा मुसलमान नहीं है। हुण मैं गल अपनी करा, जे कोई बाहरों पंज ककारी बाणा भी पा लवे, बाहरों गिट्टियां तक लम्मा चोला भी पा लवे, गल दे अंदर पंज सत जलाओ बनाउण वास्ते माला भी सुट लवे, बाहरों नजर आएगा यह बड़ा दरवेश है, बड़ा गुरमुख है, बड़ा प्यारा है, ते जे अंदर गुरबाणी दा एक वचन नाल लेके नहीं चल रहा, ते फिर कहना पएगा इस तरह दा दरवेश सगों दुनिया नूं कुराए पाउण दा काम कर रहा है। इस तरह दा दरवेश जिदे अंदर कुछ नहीं पर बाहर है। गुरु बाबे ने सानू पहला अंदर सुधारन वास्ते हुक्म फरमाया, अपने मन नूं पहला सुधार, अंदर नूं पहला सुधार, ते जे अंदर नूं सुधार लवेगा, तेरे तन दे उत्ते होवे बाणा, तन दे उत्ते नजर आवे तन नूं वेख के कि बड़ा चंगा है, गुरमुख है, लोग तेरे नेड़े लगन, तेरी संगत दी रंगत कबूल करन, लोकां दा जीवन बदले, तेरे जीवन दे असर नूं पा के लोग कहणगे बड़ा चंगा है, पर नतीजा उल्टा निकलदा नजर आ रहा है। जद लोग दूरों वेखदे ने ते दिसदा है कि बड़ा चंगा है, ते जद लोग तेरे नेड़े होके तेनूं वेखदे ने नजर आ जांदा है चंगा नहीं है, परम सी भुलेखा सी जो उड गया है। धन गुरु अर्जन देव साहब जी दा एक वचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरु अर्जन देव साहब जी ने एक जिमीदार दी उदाहरण दे के सानू समझाउण दा यतन कीता है। कहन लगे अनिक बस्तर सुंदर पहराया, ज्यो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे एक जिमीदार दे खेत सन बहुते, उन्हें कई खेतां दे अंदर बीज बीज दिता, कणक दा बीज, दूजा तीजा बीज, फसलां फुल्लां फलां दे बीज, उन्हें अपने कई खेतां दे अंदर बीज दिते। होया कि जिमीदार ने वेख्या कि मेरे बीजे हुए बीज नूं कबूतर चुगदे ने, कां चुगदे ने, चिड़ियां चुगदियां ने, परिंदे आउंदे ने, बीज चुकदे ने, उडारी भर जांदे ने, ते मैं इकल्ला, खेत बहुते ने, इन्हां खेतां दी रखवाली करां ते किवें करां। जिमीदार दे हिरदे दे अंदरों एक तजवीज़ दा जन्म होया, उहदे अंदरों एक सोच दा जन्म होया, उन्हें कखां कानां दा पुतला बनाया, का फूस इकट्ठा करके ना उन्हें पुतला बनाया, ते उस पुतले दा सिर भी बनाया, उस पुतले दियां बाहां भी बनाईयां, उस पुतले दियां लत्तां भी बनाईयां, ते फिर कीता कि उस पुतले दे सिर दे उत्ते ना एक कपड़ा भी रख दिता, उस पुतले नूं एक फटिया पुराना कमीज चोला भी पवा दिता, उस पुतले नूं गड़ दिता एक खेत दे दरमियान जाके, और सोच ए काम कर रही सी कि जेड़ियां चिड़ियां कां कबूतर ने परिंदे ने इन्हां नूं इस गल दा भुलेखा बनिया रहे कि खेत दा मालक जिमीदार खेत दे अंदर है, असी दाणा चुगांगे, ए सानू मारेगा, असी दाणा चुगण वास्ते जाना नहीं, इह डरदे डरदे परां परां उडारी भर के चले जाण, नेड़े आउणी ना। होया ए के चिड़िया कां कबूतर डरदे रहे, उस पुतले नू वेख के पै खांदे रहे ते दाना चुगन वास्ते ना आए। हुण कां बड़ा चलाक है, बड़ा चलाक परिंदा है कां, और बड़ा सियाना है। आखर हवा दा एक बुला आया, तेज हवा दा चौंका आया, उस हवा दे नाल पुतला जमीन दे उत्ते डिग पिया। ओदे जेडे पाए हुए कपड़े सनो भी उड गए, ओदे जेडे बने हुए बनावटी अंग सनो भी बिखर गए, ते ओ जेड़ा कां सी ना मैले वाली चुंज उस पुतले दे उत्ते बह के सवारनी शुरू कर देंदा है। गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन फरमाया, कहन लगे ओ बंदे जिन्ना दे कोल केवल लिबास है, पहरावा है, अंदर धर्म दी जोत नहीं जग रही, कहन लगे उस पुतले तो वद कुछ भी नहीं है। जिवें ओ पुतला बेजान है, है ता पुतला पर बेजान है, ओदे अंदर जान नहीं, सवास नहीं चल रहे, उन्हां नाड़ां दे अंदर खून गर्दश नहीं कर रहा, ओदे अंदर दिल दी धड़कन जारी नहीं है, ओ मुर्दा निर्जीव पुतला है। कहन लगे जिस मनुख ने बाहरों केवल लिबास पाया है, पहरावा सजाया है, पर ओदे अंदर धर्म दी जोत नहीं जगदी, बाणी दा असर नहीं, बाणी दा सिद्धांत नहीं, बाणी ओदे अंदर चल नहीं रही, परमात्मा दी याद ओदे अंदर लगातार चलदी नहीं, कहन लगे उस पुतले नालों वद नहीं है, पुतले वरगा ही है। ते हजूर ने लानिया कह दिता, अनिक बस्तर सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया। कहन लगे जिमें डरावना खेत दे अंदर है, इवें ही बंदा है जिन्हें बारों बारों लिबास बनाया है पर उदे अंदर नहीं है। मैं फिर एक बेनती करा, गुरबाणी दे वचना नू उलंघ के, अर्था नू मरोड़ त्रोड़ के करा, ये मेरी ईमानदारी भी नहीं होएगी, ते मैं संगत दा विचोर ते धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा विचोर होवांगा। क्योंकि जे भगत फरीद साहब जी कह रहे ने कि दर दर वेशी गाखड़ी, ते फिर मैनूं इह अर्थ ते तुहाडे सामने रखने ही पैणगे। आप बर्दाश्त करो ना करो, अर्थ ते मैनूं करने ही पैणगे ना इस पंक्ति दे अर्थ। हुण एक बचन मैं गुरबाणी दे अंदरों होर तुहाडे सामने रखदा चलां। गुरबाणी ए कहिंदी ए कि दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वाशी रास, दिल दर वेशी रास, इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। दिल दर वाणी जो करे, दिल दर वेशी रास, कहन लगे जो अपने अंदर दी रखवाली करदा है। मैं फिर बेनती करा, अंदर दी रखवाली, मन दी रखवाली, मन मेरा काम वाल ना जाए, मन मेरा निंदा वाल ना जाए, मन मेरा झूठ वाल ना जाए, मन मेरा बुराइयां वाल ना जाए, मन मेरा लोभ दे अंदर मस्त ना रहे, मन विच कोई बुराई ना रहे। गुरबाणी दा वचन है, दिल दरवानी जो करे, दरवानी दा मतलब राखी करना, जो अपने अंदर दी राखी करदा है, दिल दरवेशी रास, ते फिर मन करके राह दे उत्ते चल रहा है, ते चल केड़े राह दे उत्ते रहा है, जेड़ा राह निरंकार दे घर नूं जांदा है, ओ राह मिलदा कित्थों है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बचना विचों। जो अपने अंदर दी राखी कर रहा है और जो रब जी दे राह दे उत्ते सही ढंग दे नाल चल रहा है, गुरबाणी ए कहिंदी है ओदा इश्क मुबारक है, ओदा लेखा करते दे पास है, मतलब करता ओनू अंदरों जानदा है, ते करता पुरख वाहिगुरु दी ओ रहमत दा पात्र भी बन जाएगा, ओ करता पुरख वाहिगुरु दी बख्शिश दा पात्र अवश्य बनेगा। एक वचन मैं भगत फरीद साहब जी दे तुहाडे सामने होर रखना चाहवांगा। ओ कहिंदे ने फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाहे प्रांद। भगत फरीद साहब जी दा वचन, कहन लगे फरीदा साहिब दी कर चाकरी, चाकरी मैंने सेवादारी कर, चाकरी मैंने नौकरी कर, चाकरी मैंने गुलामी कर, कहे कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। भगत जी कहन लगे साहिब दी कर चाकरी, अपने साहिब दा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा चाकर बना, ते चाकर बनन दा मतलब है गुलाम बना, गुलाम दा मतलब है जो हुक्म गुरु कहन उस हुक्म नू मनना है, कोई उक्ती कोई युक्ति कोई अपील कोई दलील कोई किंतु कोई विंतु लेकिन वेकिन करन दी लोड़ ना होए, गुरु ने कह दिता है कम करना है ते करना है, ओदे अगे अपील दलील करन वास्ते मन कोई प्रश्न उठाए ना। ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚੱਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਹ ਮੋਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਈਰਸ਼ਾ ਬਖੀਲੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਂਦ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਜਿਹਦਾ ਜੇਰਾ ਜਿਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੁਹਾਰ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਤੀਖਣ ਮੈਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਰਾਂਦ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਕਾਂਟਾ ਠੋਕਿਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖੋ ਉਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡੋਬਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੀਖਣ ਕਾਟ ਡਾਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਕਿਨੂ ਰੋਸ ਕਾਜ ਉਹਾਂ ਕੋ ਲੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿਲ ਨਾ ਦਿਨੋ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਾਂਗਾ ਤੇ ਡੋਬਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਤਿਲ ਭਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚੇ ਤੇ ਕਮਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਕਬੀਰ ਬੋਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ ਸਰਮਦ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰਜਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਜਗਤ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਕੋ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ ਬੇਤਾਲ ਜੋ ਸਾਜ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ हारमोनियम ताल विच ना होवे बजाउण वाले दा सुनन वाले दा रस नहीं। गुरु के कीर्तनीय निक्की जी हथौड़ी दे नाल जोड़ी नूं ताल विच करदे ने तुहाडे सामने, जोड़ी दे पुड़े नूं कदी चढ़ा देंदे ने कदी ला देंदे ने, सुर ताल विच करदे ने। जोड़ी ताल विच ना होवे बजाउण ते सुनन वाले दा आनंद नहीं। सरंगी रबाब सरंदा कोई भी साज अगर ताल विच है सुर विच है ते उहदे विचों राग दा जन्म हुंदा है, गाउण वाले बजाउण वाले सुनन वाले दा आनंद बनदा है। ते जे उह साज सुर ताल विच ही नहीं ते ना बजाउण वाले दा आनंद ते ना श्रोते दा आनंद सुनन वाले दा आनंद। आए सन बेताले जगत नूं ताल करन वास्ते, बेसुरे जगत नूं सुर विच करन लई, ते लोकां ने कहा बेताला। कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा पया दवाना शाह का नानक बौराना। पातशाह दी बाणी दे अंदर आ बचन आउंदे ने। कोई मस्ताना कहिंदा है, कोई दवाना कहिंदा है, कोई बेताला कहिंदा है, कोई पूतना कहिंदा है, कोई दस्तगीर वर्गे इट्टां वट्टे मारन लई आ जांदे ने। पर दरवेशां नूं लोड़िए रुखां दी जी रांद, गुरु नानक साहिब जी दी मुबारक रसना तों किसी दे विरोध दे अंदर एक कौड़ा फिक्का बोल निकलदा किसी ने नहीं सुनिया। इट्टां वट्टे मारन वाले ओ तुहाडी कुल नास हो जाए, ये बचन पातशाह ने नहीं कहे। जेडे मेनू मंदा बोल रहे हो लोग तुहानू मंदा बोलन, ये बोल नहीं कहे। जिन्हां ने मंदा बोलिया पातशाह उल्टा उन्हां दा भला कर दे रहे। ते मैं ते इतिहास दे पन्ने पढ़ के एक बारी हैरान होया, भाई साहब भाई मरदाना जी कर देंदे ने प्रश्न। वो कह देंदे ने बाबा असीं इन्हां लोकां दा भला कर रहे हां, अपना घर छड्या परिवार छड्या तियां पुत्तर छड्डे बच्चे छड्डे, गुरु नानक साहब भी गृहस्थी ते भाई मरदाना साहब भी गृहस्थी, उन्हां दे भी दो साहिबजादे ने भाई रजादा जी ते भाई सजादा जी, गुरु नानक साहब जी दे दो साहिबजादे ने बाबा श्री चंद जी ते बाबा लखमी दास जी। आखिया आपां घर बार छड्डिया मां बाप छड्डे तियां पुत्तर छड्डे आए आ इन्हां दा भला करन लई, ये उल्टा सानू मंदा बोलदे ने, उल्टा सानू गाली गलोच करदे ने। मुस्कुराउंदिया होया कहन लगे मरदानिया जदों कोई पागल बंदे दा वैद जां डॉक्टर इलाज करदा है ना ते ओ पागल डॉक्टर नूं वैद नूं मंदा ही बोलदा है, क्योंकि होया जो पागल समझदार ते होया ना। अगर समझदार दा इलाज होवे समझदार ते करेगा धन्नवाद, जेड़ा बंदा है सूझ सियाणप रखण वाला ओ ते कहेगा तुहाडा शुकराना है तुसीं इह चंगा उपदेश मेरी झोली विच पाया है। पर जेड़ा अति मूड अति पागल है ओ मारन वास्ते आएगा इन्हें सच दी गल कीती क्यों है, ओ हथियार चुक के आ जाएगा इहदा गला बंद करो इहदा बोलना बंद करो। गुरु नानक साहिब जी नाल इस तरह हुंदा रहा। गुरु नानक साहब कहन लगे मरदानिया जदों कोई वैद पागल दा इलाज करन लई जांदा है ते ओ मंदा ही बोलदा है, उस वैद ते कदी कदी ओ हथी वी पै जांदा है, ते वैद अपना गुण ना छड्डे ओ तां ही चंगा वैद है, ओ तां ही सुगड ते सुजान वैद है। ते जे उस पागल दा इलाज करदा करदा अपने गुण नूं ही गवा पवे ते फिर ओ वैद कादा होया। लोग कहणगे ओ ते है पागल पर तूं ते वैद है ना, तेरे कोल ते गुण है। तो खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे दरवेशां नूं लोड़ीऐ रुखां दी जी रांद। एक बेनती मैं इस संबंध दे अंदर होर भी करदा चला, दरवेश लिबास पा के बनना बड़ा सौखा है, बाहरों बनना इनू मैं दूजे लफजां दे राही बयान करा, लिबास पा के दरवेश अखवाउणा लोकां दे कोलों बड़ा आसान है, ते अंदरों मन करके दरवेश बन जाना ओना ही कठिन है ओना ही महान है। जिन्ना जल्दी तन धर्म की दुनिया में चला जाता है ना उन्नी जल्दी मन धर्म की दुनिया में नहीं जाता। ते जिहदा मन धर्मी बने ही ना, मन धर्म नूं कबूल करे ही ना, मन धर्म के नेम नुकते अपनावे ही ना, वो बाहरों किस तरह का पहरावा बनाई रखे कुछ अखवाई जाए वो कादा दरवेश होया। हां लोग तेनू लख सलामा करन पर खुदावंद करीम दे घर दे अंदर परवान नहीं पएगा, क्यों? क्योंकि गुरु तेरे अंदर दा सुधार मंगदे ने, गुरु तेरे मन दा सुधार मंगदे ने, ते मन दा सुधार करन लई गुरबाणी दा उपदेश है। अगां भगत जी कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत मैं वेखिया लोग चल रहे ने आम दुनिया दारा वांग किवें चल रहे ने दुनिया दारा वांग ए ते बेनती मैं कर ही चुका ना कि बाहरों दरवेश ने चलना ही दुनिया वांग है बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो गृहस्थी होवे बाहरों दरवेश सच्चा होवे जो तियां पुत्रां दा पिता होवे बाहरों दरवेश होवे जिहदे घर दे अंदर पत्नी होवे बाहरों दरवेश ओ है जो अपने महल माड़ियां दे अंदर रसदा वसदा होवे पर ओ दरवेश केवल बार बार दा अंदरों दरवेश ओ है जो सच दे नाल जुड़िया होवे बुराइयां तो बचिया होवे गुणा दी माला परो के अपने मन दे अंदर वसाई होवे अंदरों दरवेश हो चलना दुनिया पत बारों ते चलना है दुनिया दारा वांग अंदरों वखरे होके चलना है अंदरों दुनिया दारा वांग नहीं चलना अंदर दुनिया चुगली निंदा ईर्ष्या दी भरी है पर दरवेश दे अंदर ना चुगली ना निंदा ना ईर्ष्या होवे अंदरों दुनिया दे अंदर खोट है पर दरवेश दे अंदर कोई खोट ना होवे अंदरों दुनिया दे अंदर अगर मन करके वेखिए ना आम दुनिया नू ते दुनिया दे अंदर कोई अपना है कोई बेगाना है जेडे अपने ने उन्हां नू प्यार जेडे बेगाने ने उन्हां तो नफरत पर जेड़ा दरवेश है ओदी दुनिया दे अंदर सारे अपने ने ओदे वास्ते कोई बेगाना नहीं है ओदे वास्ते सारे ही अपने ने ओदे मन दे अंदर सारे वास्ते जगह होवे कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं कोई यहूदी नहीं कोई बोधी नहीं कोई पारसी नहीं ते जड़ा बड़ी सोच नू सीमित करके चल रहा है बड़े छोटे दायरे वे चल रहा है खिमा चाहवांगा ओ सच्चा दरवेश जिस तरह का गुरु नानक साहब जी ने बनाया है उस तरह का दरवेश नहीं होएगा जे गुरु नानक साहब जी का उपदेश है सारियां ले सांझा खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चौं वरना को सांझा ते रब दे सच्चे दरवेश का उपदेश भी चौं वरना लई सांझा है ओदे निगाह दे अंदर कोई बेगाना कोई अपना नहीं कोई इलाके दी नफरत नहीं कोई अपनी जथे बंदी दी नफरत नहीं फिर ओदे लई भी सारे बराबर ने भगत जी कहन लगे बन उठाई पोटली किथे वंजा कत ए जिहड़ी बुराइयां दी पोटली आम लोग सिर दे उत्ते रख के चल रहे ने इनू छड के दरवेश बनिया जा सकदा है ए जिहड़ी बुराइयां दी गंढ बुराइयां दी पंड लैके असीं सिर दे उत्ते चल रहे हां सतगुरु गुरु नानक साहब जी नू पढ़ो गुरबाणी विचों ते गुरु नानक साहब जी ने किधरे भी एक बाणी दे अखर दे अंदर ए संदेश नहीं फरमाया कि तू संगत करिया कर तेरी चमड़ी दा रंग बदल के ना चिट्टा हो जाएगा तू संगत करिया कर बाणी पढ़िया कर नितनेम करिया कर या गुरमत दे असूलां नू मन्निया कर ते तेरे नक्शो निगार जेड़े करूप ने ओ सरूप बन जाणगे तेरा कद वध के लम्मा हो जाएगा तू सुनखा बन जाएगा किधरे गुरबाणी दे अंदर इस तरह का वचन आया जदों भी आया है उदों मन दे संबंध विच वचन आया है संगत करेगा मन बदलेगा बाणी नू पढ़े विचारेगा मन बदलेगा बाणी दे आसरे चलेगा मन नू रस मिलेगा गल ही गुरबाणी दे अंदर प्यारे मन दी चलदी है ते दरवेश ओ है जो अंदरों बाणी दे नाल जुड़िया अंदरों फिर अखीर ते मैं एक बेनती होर भी करदा चला साढ़े कोल कोई इस तरह की ऐनक ते है नहीं पे जो अखां दे उत्ते लाईए ते जेड़ा साढ़े सामने खड़ा है वो नजरां तक लैन के सच्चा है जां झूठा है साड़ी अपनी इतनी तौफीक नहीं अखां दे अंदर इन्नी बरीक बीनी नहीं पर जे अपनी समझ नहीं ते समझ देन वाले गुरु नूं पुछना ते कोई मेहना नहीं ना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी चार अखर बाणी दे उस कसवटी नू उस बंदे दे उते ला के परखलिया करो कि ए सच्चा है जां झूठा है दा जवाब तुहानू अपने आप मिल जाएगा अपने आप मिल जाएगा जे गुरबाणी दे अनुसार गुरबाणी दी कसवटी दे नाल ला के परखोगे क्यों परखन दी लोड़ है क्योंकि सुनियारा सोने नू हाथ दे अंदर पकड़दिया ही वो अंदाजा ते ला लैंदा है कि सोना असली है जां सोना नकली है पर अपनी ओदे कोल एक हुंदी है परख एक हुंदा है पत्थर दा निक्का जिहा वट्टा जिहनूं कसवट्टी कह दिंदे ने ओह आम पत्थरां वर्गा पत्थर नहीं थोड़ा खास पत्थर हुंदा पत्थर ही है सोने नूं ओदे उत्ते कसाउंदे ने ओदे रंग नूं वेख के उहनां नूं समझ पै जांदी है असली सोना है जां नकली सोना है प्यारिओ जे खुद ना समझ पवे असल ते नकल दी पहचान करन वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे उते उनू ला के वेख लिया करो। ए बंदा सच्चा है तां समझ पै जाएगी, जवाब आ जाएगा, ते जे झूठा है तां समझ पै जाएगी। एक बेनती मैं होर करदा चला आप संगत दे सामने, जिन्हां दे कोल कोई कला है, कोई गुण है, कोई रिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ भी किसी दे पास है, वो सारे सत्कार योग ने, मुबारक ने। पर जिथों ये सारे गुण सानू मिल रहे ने, उदा ना है निरंकार, उदा ना है परमात्मा। जिस दी झोली दे अंदर भी जो किसी नू दात मिली, वो मिली कित्थों? ये निरंकार दे कोलों। हुण जिन्ना पानी झीलां दे अंदर, तलाबां दे अंदर, छपड़ियां दे अंदर, सरोवरां दे अंदर, नदियां दे अंदर, दरियावां दे अंदर आप वेख रहे हो, विद्वानां ने पानी दा मरकज, पानी दा केंद्र सागर नूं मन्निया है। और पानी सागर दा ही है, भावे वह छपड़ां दे अंदर है, तलाबां सरोवरां दे अंदर है, झीलां दे अंदर है, या दरियावां दे अंदर है, पानी दा मरकज सागर है, सागर दा ही पानी सारिआं दे अंदर है। किसी दे कोल कोई ताकत, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, कोई गुण है, तो वह गुण सारे दे सारे परमात्मा को आए ने। ते धन श्री गुरु नानक देव पातशाह तो लैके दसे गुरु साहिबाना ने सानू सीधा परमात्मा दे नाल जोड़िया, सीधा परमात्मा दे नाल। मुबारक ने वह छपड़िया जिन्हां दे कोल पानी है, पर साडा छपड़िया दे नाल संबंध नहीं, सागर दे नाल संबंध है। मुबारक ने वह नदियां, मुबारक ने वह दरिया जिन्हां दे कोल पानी है, उस सत्कार योग ने, चलो उन्हां दा पानी फसलां नूं हरिया भरिया करदा है, लोकां दी प्यास बुझांदा है, मुबारक ने। पर जिथों उस दरिया नूं पानी मिल रहा है, उहदा शुक्रिया अदा करना कदी ना भुलो, और उन्नू ही अपना मुरशद मनो, उहदे नाल ही जुड़ो। तुहाडी शरदा नूं कदी चकना चूर होना ही नहीं पएगा, तुहाडी शरदा कदी टुटेगी नहीं। अधूरियां दे नाल जुड़ के शरदा टुट जांदी है, पूरियां दे नाल जुड़ के कदी शरदा टुटदी नहीं है। ते साडे वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नालों वड्डा कोई नहीं, इन्हां नालों पूरा भी कोई नहीं। भगत फरीद साहब जी दे ए मां वाक जिन्हां नूं आधार बना के मैं कुछ बेनतियां आप संगत दे सन्मुख रखण दा निमाणा यतन कर रहा सां।
1: हस्त अलंबन देहु प्रभ, कर तो उदर गोपाल, मोह निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो हो किरपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी, हर जियो राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, किजना बुझे किजना सूझे,

इन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधवे जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी तिस राखु हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखु हो लाज मुरार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा जे जाना तिल थोड़े सम्मल बुक परी जे जाना शहो नंदड़ा तां थोड़ा मान करें

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुकदे ना। हकीकत ए है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नूं जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास ए अज तों पहलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर ए वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर ए आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जा के तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लयो, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लयो। एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने, जो तंदुरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, जो रोकी बनाउन वालियां ने चीजां वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा भी तुहाडा, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानूं खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैसिया द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नू खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
गुरुद्वारे दे अंदर मंदिर मस्जिद दे अंदर धर्म स्थाना दे उते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नू जो तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडी मर्जी है उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का ते कोई उजर मामला ही नहीं, धन का ते कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे दे अंदर ते मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन ते कदी ये नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब दे अंदर ते मैं पब दे अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला ते मैं अपना जोर लाउना, धन ते इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो उहनूं सही पासे वरतो, यह तुहाडी समझ है। मैं एक बेनती होर भी चलो करदा चला, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजै दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण छीदे कोल हाथ फैला के मंगो। अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा दरवाजा नौ करे तुहाडी डोर खड़काए, तुसी पुछोगे ना तेरी मंग की, कपड़ा चाहिदा है, भोजन चाहिदा है, धन चाहिदा है, जुत्ती चाहिदी है, तेरी मंग की है, कोई मंगता आ जाए। हुण जद ए बोल बोले कि सामत दीजै दयाल प्रभ जे तुम्हें अरादा, सतगुरु मैं करदास लेके आया तेरे दर दे उते, ते जिहदे चरणा विच अरदास लेके गए उन्ने अगों पुछया आउण वालिया तेरी अरदास की है, तेरी मंग की है, ते आख्या सा मत, मत मैने अकल, हे मेरे दयालु स्वामी जी मेरी झोली दे अंदर ओ अकल पाओ। केड़ी अकल? जित तुम्हें अरादा, जेड़ी अकल दे नाल मैं तेरे नाल जुड़िया रवा, तेनू अरादा रवा। इत्थे मैं एक बेनती होर करदा चला, साडे शरीर दे जिन्ने अंग ने उह सारे साडे मन दे कह चलदे ने। मन कहिंदा है अखां नूं इधर वेखना है ते अखां उधर वेखदियां ने दूजे पासे नहीं, मन कहिंदा है अखां नूं उत्ते वेखना है ते अखां उत्ते वेखदियां ने थल्ले नहीं वेखदियां, मन कहिंदा है हत्थां नूं कि इस तरह हिलना है ते हत्थ उस तरह ही हिलना शुरू कर देंदे ने, इशारा करना शुरू कर देंदे ने जिस तरह मन दा विचार बनदा है। आप पढ़े लिखे देश दे वासी हो, मेरी बेनती नूं समझण दा यतन करियो। मन कहिंदा है पैरां नूं इस मार्ग दे उत्ते चलना है, ते पैर अगों कोई उक्ती युक्ती अपील दलील बयान नहीं करदे, पैर उस मार्ग दे उत्ते तुरना शुरू कर देंदे ने। मन दा विचार बन जाए कि अज मैं पैरी चल के पब विच जाना है, ते पैर तुहाडे सारे शरीर नूं लैके पब तक पहुंचा देंगे। मन दा विचार बन जाए कि अज पब विच नहीं जाना, अज मैं मंदिर गुरुद्वारे विच जाना है, मस्जिद विच जाना है, ते तुहाडे दो पैर तुहाडे सारे शरीर दा वजन चुकदे चुकदे तुरदे तुरदे ओह तुहानूं गुरुद्वारे लिया के खड़ा कर देंगे। तुहाडा मन कवे कि अज मैं लंगर विच सेवा करनी है, ते तुहाडे हाथ भांडे साफ करना शुरू कर देंगे, तुहाडे हाथ लंगर वरताउणा शुरू कर देंगे, ते वरताउंदिआं वरताउंदिआं मन ढेरी ढा दवे, मन कह देवे कि हुण नहीं वरताउणा, ते उत्थे ही ये हाथ भी बंद हो जांदे ने, वरताउणा बंद कर देंदे ने। मेरे कहन तों गरज साडे जिन्ने शरीर दे अंग ने उन्हां सारिआं अंगां दे उत्ते हुक्म चलदा है साडे मन दा। मन पैरां नूं जिधर इशारा करदा है पैर तुरदे ने, जिस तरह हत्थां नूं इशारा करदा है हत्थ करदे ने, जिस तरह मन अखां नूं कहिंदा है अखां उस तरह वेखदियां ने, जो मन दी मर्जी हुंदी है कन्न नूं सुणदे ने, दूजा बोल कन्न नहीं सुणदे, मन दी मर्जी दे मुताबक कम करदे ने। पर जे साडे सारे शरीर दे अंग चलदे ने साडे मन दी गुलामी अंदर, मन दे हुक्म अंदर, ते ख्याल करियो मन वी साडा आजाद नहीं है, साडा मन कम करदा है साडी बुद्ध दे मुताबक। जिस मनुख दे कोल बुद्ध चंगी होवे, समझ चंगी होवे, उहदे मन दे अंदरों बनन वाले विचार चंगे बनन गए, जिहदे विचार चंगे बन गए
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਅਗਰ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਮਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੇ ਬਿਖੇਰਦਿਆਂ, ਕੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਖੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੇ ਰਹਿਮ ਇਹ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੇ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਅਰਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤ ਪਾ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਲ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਬਚਨ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨਾਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਂਦਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪ ਮਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ
सूत तोड़िया मणका मणका करके ओनू मिट्टी दे अंदर बखेर दिता। भाई गुरदास साहब किधरे खड़े सन, उन्होंने वेखिया कि बांदर ने सोने की कदर नहीं पाई, कलम लई कागज लिया ते एक बोल सानू उपदेश करन वास्ते भाई गुरदास साहब जी ने लिख दिता। कहन लगे रतन मणि गल बांदर है कि हकीम ना जाने, रतना दी जड़ी माला बांदर दे गल वे से पर बांदर की जाने उहदी कीमत की। सोना पावे कीमती है पर जिन्हू समझ है उहदे वास्ते कीमती है, जिन्हू नहीं समझ उहदे वास्ते उह मिट्टी दे बराबर है। तुहानू समझ है तुहाडे लई सोना कीमती है, मनुख दे जीवन दे अंदर सोने दी समझ है, मनुख सोने दी संभाल करदा है। सोने नू यां सजावट दे रूप विच यां किधरे लोकरां दे अंदर रखदा है, खुले आम घरां दे अंदर सोना पिया टेबल दे उत्ते दीवार दे नाल लटकदा होया तस्वीरां दी तरह सोना नजर नहीं पैंदा। लोहा आम मिलदा है, कीमत बड़ी थोड़ी है, सोना खुले आम इस तरह पिया नहीं मिलदा, ना सुनियारियां दी दुकानां दे उत्ते ते ना साड्या घरां दे अंदर। तो खैर क्योंकि सोने की कीमत सानू पता है, सोने की कीमत का ज्ञान है, पर पशु नू सोने की कीमत का नहीं पता। पशु नू पैरां दे हेठ लताड़दा है, पैरां दे हेठ कुचलदा है, उत्ते पैर रखदा है ते अगे निकल जांदा है। चलो मैं एक बेनती होर आप संगतां दे सन्मुख रखदा चला, जिन्नी दुनिया की करंसी है, चाहे वह पाउंड है, डालर है, रुपया है, यूरो है, बाकी दे तमाम नोट करंसी ने, उहदी समझ मनुखी जीवन विच ते है। हुण मनुख दे पास करंसी होवे ते उहनू संभालदा है, मनुख दे पास धन होवे उहनू संभालदा है, ते तुसीं पंड बन के डालरां दी किसे पशु दी खुरली दे अंदर पाओ ते पशु की जाने डालर की होंदे ने, पशु ते उहनां डालरां पौंडां नूं वी पैरां दे हेठ लताड़ेगा। हां उहनां ही डालरां पौंडां दे नाल कोई हरे रंग दा चारा खरीद के पशु दी खुरली विच पाओ, उहदे सामने रखो ते पशु उहनू खाना शुरू करेगा, उह वी प्यार दे नाल, पशु दा मन खुश होएगा, खाएगा प्यार दे नाल। पशु नू समझ चारे दी है, चारे दी संभाल है, मनुख नू समझ करंसी नोटां दी इहदी संभाल है, पशु नू करंसी दी संभाल ने। हुण मैं अपने असली मुद्दे नू तुहाडे सामने अरज करां, जिस मनुख नू धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलदिआं चलदिआं अपने सवासां दी समझ पै गई, उह ते सवासां दी करेगा संभाल ते खिमा करिओ, जिन्नू ना समझ पई उह पशुआं वांग इन्हां सवासां नू अजाई रोलेगा। भावे पाउंड किन्ना कीमती, 80 रुपये का एक पाउंड है, पर पशु दे सामने पाओ ते पशु उहनू पैरां दे हेठ रोल देगा। भावे दिनार 200 रुपये विकदा होवे पर पशु दे सामने पाओ ते उह पैरां दे हेठ रोल देगा। भावे डालर 50 रुपये रेट ते विकदा होवे पर पशु ते उहनू पैरां दे हेठ ही कुचलेगा ना, पशु के जाने की कीमत की। जिस मनुख नू समझ आ गई कि सवास कीमती ने, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੀ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਰੁਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਸਾਲ,
पर वो बड़ा अपराध कमा रहा है, पाप कमा रहा है, गुनाह कर रहा है। जेड़ा मारी गया सवासी मुक है, उन कुछ करन जोगा रहा ही नहीं, क्योंकि करना सवासा नाल है। अज सवास तुहाडे कोल ने, तुहाडी मर्जी है, तुहाडी सोच दे मुताबिक इन्होंने वरतों विच आउणा है। इन्हां नूं चंगे पासे वरत लो, इन्हां नूं मंदे पासे वरत लो, इन्हां नूं परमात्मा दी याद विच वरत लो, ते भावे इन्हां नूं निंदा चुगली ईर्षा दे विच वरत लो। सवासा ने कोई इतराज नहीं करना कि मैनूं चंगे पासे क्यों वरतना है, मैनूं मंदे पासे क्यों वरतना है। एक बेनती उदाहरण वजो मैं होर करदा चला, तुसी खरीद के लियाओ कार, ते कार लियांदी खरीद के तुसी एक लख डालर दी महंगे पा दी कार खरीद के लियांदी, कार नूं चलाउणा है तुसी, ते हुण कार ने ते मना नहीं ना करना कि मैं वैसिया द्वारे नहीं जाना, मैं ते केवल गुरुद्वारे जाना है। कार ने ए भी नहीं कहना कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाना ते मैं केवल पब क्लब दे अंदर जाना है। उन्हूं ड्राइव करन वाले तुसी हो, चलाउण करन वाले तुसी हो, अपने सवासा की गड्डी नूं चलाउण वाले प्यारियो तुसी हो। तुहाडी मर्जी है इन्हां सवासा दे नाल चंगा कर लो, इन्हां सवासा दे नाल मंदा कर लो। तुहाडी मर्जी इन्हां सवासा दे नाल अमृत खरीद लो, तुहाडी मर्जी इन्हां सवासा नूं दे के ते सवासा दे बदले जहर खरीद लो, यह मर्जी तुहाडी है। भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जे जाना तिल थोड़े सवास थोड़े ने, जे बंदे नूं समझ आ जाए ते संभल बुक भरी, वो बड़ा संभल संभल के कदम फूक फूक के रखदा, फिर सवासा नूं अजाई गवाउंदा नहीं है, इन्हां दी संभाल करदा है। अगली पंक्ति विच होर बचन किया, कहन लगे, जे जाना शहो, शहो मैंने पति, शहो मैंने परमात्मा। कहन लगे, जे जाना शहो नंडड़ा, ते नंडड़ा किन्नू कहिंदे ने, जिहड़ा छोटा जिहा बाल होवे। जे मैं जानदा कि मेरा परमात्मा बाल सुभा वाला है, बाल बुद्ध वाला है, छोटे बच्चे वर्गा सुभा रखदा है, ता थोड़ा मान करें ते मैं भी अपने गुण कर्म दे उत्ते कदी हंकार ना करदा। मैं अपने कर्म धर्म संस्कारां नूं वेख के हंकारी ना बनदा, मान ना करदा। जे मैनूं पता लग जांदा कि परमात्मा हंकारी नूं पसंद नहीं करदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने एक बचन कहा है गुरबाणी दे अंदर, कहन लगे, पायो बाल बुद्ध सुख रे। पर कह रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब जी, बड़ी हैरानगी होई सतगुरु, बाल दी ते बुद्धि बड़ी अचेत जी हुंदी, बाल अवस्था दे अंदर ते ना एक बाल सुतंत्र बोल सकदा है। बच्चे दे दोष मन्ने ने विद्वाना ने चार, बच्चा सुतंत्र बोल नहीं सकदा, बच्चा सुतंत्र दान नहीं दे सकता, बच्चा सुतंत्र आजाद होके किसी देश कौम की रहनुमाई करनी चाहे ते नहीं कर सकता, और बच्चा बिरध ज्ञानी भी नहीं होता, मेरा मतलब अंदरों सूझवान ते सियाना भी नहीं होता। पर यह दोष आम मनुखता दे अंदर आए दुंदे ने, आम मनुखी बालां दे उते दोष लागू हुंदे ने। जे गुरु साहिबाना नूं अपने पैमाने दे अंदर लिया के खड़े करांगे ते फिर साडे मन दे अंदर दुविधा बन जाएगी, क्योंकि गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी नूं जे तको ते गुरु हरकृष्ण साहब जी की उम्र केवल सवा पांच साल दी, जदों वह गुरु नानक साहब जी की गुरगद्दी का भार अपने कंधिया दे उत्ते मोढ़िया दे उत्ते संभालना शुरू कर देंदे। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक बचन किया है, पायो बाल बुद्ध सुख रे। जे बच्चे दे अंदर ये चार दोष ने ना, ते बच्चे दे अंदर गुण भी बड़े ज्यादा ने। हुण आप पुछो गुण केड़े केड़े ने, एक बच्चे नूं नेड़े होके वेखो ते बच्चा अंदरों ते बाहरों इको जिहा तुहानूं मिलेगा। बहुत छोटे बच्चे ना जिहड़े दो चार पांच साल की उम्र होवे, बच्चे नूं वेखो, बच्चा जो अंदरों है ओही बच्चा बाहरों है। एक जवान ते एक बिरध बाबे नूं वेखियो, खिमा करियो, एक जवान ते एक बिरध नूं वेखो,
ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਆਫਿਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਗ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੇਚ ਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਨੌਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੂ ਬਹੂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਘਟਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਦਲਦਲ, ਇਹ ਪਖੰਡ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਗੀਨਤਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਗਮਗੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਜੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ।
धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने पायो बाल बुद्ध सुख रे। हुण जिहड़े वीर ते पैना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच आप हाजर होना, मेरी एक बेनती नूं बड़े ध्यान दे नाल जिहे नशीन करन दा यतन कर लिओ। जिन्ने काम ने किसी ने दुकानदारी करनी होवे ते बाल बुद्ध नहीं चाहिए, जवान बुद्ध चाहिए ते या बुढ़ापे वाली बुद्ध चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे तक पहुंचदिया तजर्बा बड़ा इकट्ठा हो जाता है। जवानी दे अंदर सूझ समझ बड़ी होंदी है, शरीर दे अंदर बल ताकत बड़ी होंदी है। एक सफल दुकानदार जां जवान मिलेगा या बुढ़ापे दे अंदर मिलेगा। अगर सफल व्यापारी बनना है, कारोबारी बनना है, ते बुद्ध चाहिए है जवानी दी, बुद्ध चाहिए है बुढ़ापे दी। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है, वैद बनना है, हकीम बनना है, तो बुद्ध चाहिए है जवानी दी, बुद्ध चाहिए है बुढ़ापे दी। बाल बुद्ध काम उत्थे नहीं देगे, बाल बुद्ध कारोबार दे अंदर काम नहीं देगे। एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ज्ञानी विज्ञानी बनना है, उत्थे भी बाल बुद्ध काम नहीं देगे। उत्थे भी बुद्ध चाहिए है जवानी वाली, बुद्ध चाहिए है बुढ़ापे वाली। दुनिया के जिन्ने एंगल ने, दुनिया के अंदर जिन्ने राह ने, क्योंकि जीवन साडा बहुपक्षी है, ते जिन्या पक्खां तों आप विचार करके वेखोगे हर राह दे उत्ते बुद्ध सानू काम देगी जवानी वाली, बुद्ध काम देगी बुढ़ापे वाली। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कहन लगे रब जी दे राह दे उत्ते चलन लग्या ना जवानी वाली बुद्ध काम देंदी है ते ना बुढ़ापे वाली बुद्ध काम देंदी है। इत्थे केड़ी बुद्ध काम देंदी है? बाल बुद्ध। तां इत्थे कह रहे ना पायो बाल बुद्ध सुख रे। बाल बुद्ध दे अंदर ए विशेषता है कि बच्चे दे कोल वासना दा भरिया होया मन नहीं हुंदा। बच्चे दे मन दे अंदर काम नहीं, क्रोध नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, ईर्षा नहीं, बखीली नहीं, कुछ भी बच्चे दे पास नहीं। पायो बाल बुद्ध सुख रे। ए सारे औगण, सारियां बुराइयां, सारा कूड़ा करकट एक जवान दे कोल भी हुंदा है ते बुढ़े दे कोल भी हुंदा है, खिमा चाहवांगा, पर बाल दे कोल वासना दा भरिया मन नहीं हुंदा, किसी तरह की वासना उहदे मन दे अंदर नहीं है। जीसस नूं किसे ने प्रश्न किया सी कि जीसस मैं मिलना चाहुंना रब नूं, तू है गौड़ दा पैगाम देण वाला, रब दा संदेश वंडन वाला, ते मैं तेरे कोलों प्रश्न करके पुछ करदा कि रब नूं मिलना होवे ते किवें मिलिया जा सकदा है। कहिंदे ने कि जीसस 2 मिंट वास्ते ना चुप रहा, उन्हें अपनियां नजरां नूं चार चुफेरे दौड़ाया पर जवाब ना दिता। सवाल करता कहिंदा है मेरा सवाल मैं तुहाडे सामने रखिया है, इहदा जवाब देरी क्यों लगी, सोच रहे हो जवाब आउंदा नहीं? वो कहिंदा नहीं, मैं जवाब लभ रहा। उन्हें कहा जवाब लभ रहा कित्थों लभ रहा, तेरे हथ दे अंदर कोई ग्रंथ नहीं, कोई तेरे हथ दे अंदर शास्त्र नहीं, कोई किताब नहीं, लभ कित्थों रहा है? उन्हें आख्या लभ जाएगा, तेनू दस देंगा कित्थों लभ रहा। चार चुफेरे नजरां नूं घुमाया, एक औरत ने अपनी गोद दे अंदर छोटी उम्र दा बाल चुकिया सी, बाल न्याणा बच्चा, ते जीसस बोल पिया कहन लगा सजना तेरा जवाब मैनू मिल गया। वो कहन लगा किस तरह? कहन लगा ओ जिहड़ा छोटा जिहा बच्चा मां दी गोद दे अंदर है ना, उस तरह दा बन जा जे परमात्मा नूं मिलना है। ते सवाल करता ने दूजा सवाल कर दिता। वो कहन लगा जीसस मैं सवाल किया सी परमात्मा नूं मिलना है किवें मिला, तू अगों जवाब दिता है बच्चे वर्गा बन जा, ते ख्याल कर बच्चे दा कद अजे 2 फुट दा, मेरा कद 6 फुट दा, ते मैं बच्चे वर्गा बना ते बना किवें, अपने आप नूं इन्ना छोटा करा तन करके किवें करा। ते कहिंदे ने फिर जवाब आया तन छोटा करन दी लोड़ नहीं, मन अपना कर उस बच्चे वर्गा, जिमें वासना तो रहत कोई निंदा कोई चुगली कोई ईर्षा कोई बुराई बच्चे विच नहीं, तू ही अपने आप नूं अंदरों इस तरह दा बना, तन छोटा करन दी लोड़ नहीं, मन नूं उस तरह दा बना। जिमें एक पवित्र जिहा मन एक बच्चे दे कोल हुंदा, ते मैं ते डॉक्टर इकबाल दे बोल पढ़ के हैरान होया। डॉक्टर इकबाल साहब कहिंदे ने कि किसी बच्चे के तबस्सम में उतर जाओ, तबस्सम कहिंदे ने बुलियां दी मुस्कुराहट। वो कहिंदा किसी बच्चे के तबस्सम में उतर जाओ
तो शायद समझ पाओ कि खुदा कैसा होता है। कहिंदा जे खुदा नूं समझना है ना

इच्छा रहे दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोद दा आनंद माण रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत कम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर कम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इत्थे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पाएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई कम विगड़दा होवे उठ के जा सकदे आ, तन करके भी चलो, मन करके भी उत्थे रहिए, पर जिन्ना समा इत्थे हां इत्थे ही रहने की कृपा करियो। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी स्यों। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन

हरी रंग नवेला हुए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया पिरम ना लगई जे लोचे सब को एहु पिरम प्याला खसम का जय पावे तै दे फरीदा जिन लोयन जग मोहिया से लोयन मैं डिठ कजल रेख ना सहंदया से पंखी सुवे बहिठ फरीदा कुकेंदियां चांगेंदियां

आठ बाट मैंने राह दे अंदर तुरे जा रहे ने, दो जा रहे ने दो आ रहे ने, कबीर दा ते सारा दिन काम ही है, तनना बुनना तजो है कबीर, इन्हें तनना बुनना ही छड़ देता है। ते फिर कबीर साहब दी मां विरोधता करदी करदी ए भी कहिंदी है, हमको सत्थर उनको खाट, एक दो मंदिर एक दो बाट, हमको सत्थर उनको खाट, सानू सौन वास्ते जमीन ते कहिंदा है, जमीन ते सौ, ते जेड़ियां दो चार पाइयां घर दे अंदर ने खाट, मैंने मंजी जेड़ियां दो मंजियां घर दे अंदर ने ओ इन्हां नू दे देंदा है, जेड़े दे संगी साथी आउंदे ने। कबीर दी मां कबीर नाल सहमत है, किदी मां, किसे भगत दी मां, गुरु साहिबाना दा परिवार या भगत जना दा परिवार किसे नाल सहमत नहीं है, कुछ सहमत ने बहुते सहमत नहीं है। अगर ये वेखोगे परिवार सहमत होवे ते परिवार सहमत होएगा इन्हीं रब्बी पेंडे दे उत्ते आप चल सकोगे ने। अमृत छकन दा विचार है छक लो, गुरु गुरु जपन दा विचार है जप लो, ये कहो कि सागर दियां लहरां खामोश हो जान ते मैं अपनी बेड़ी नूं फेर तोरांगा। सागर दियां लहरां प्यारे कदी खामोश हुंदियां ही नहीं है, एक लहर मिटदी नजर आ रही है नाल दूसरी बनती भी नजर पै रही है। ते जे कोई मलाह ए गल कहे बई सागर दियां लहरां शांत हो जान ते मैं फेर बेड़ी चलावांगा, सागर दियां लहरां ते अज तक ना शांत होईयां ने ना इन्हां ने होना। परिवार कदी किसे दा सहमत ना होया है ते ना होएगा। तुसी खुद वेखना है कि मैं धर्म दे पेंडे चलना है जां नहीं चलना। तो भगत फरीद साहब जी कह रहे ने तौली रावे कोए, कहन लगे कोई विरला विरला बजुर्ग तौलियां वालां दा मालक, कहन लगे कोई विरला विरला ही खुदा तेरी भुख ते प्यास नूं लेके तेरे कोल आ रहा है, वरना समा पास करन लई आउंदे ने, खिमा चाहवांगा समा पास करन लई आउंदे ने, कोई विरला विरला तेरी तड़प तेरी चाहत लेके गुरुद्वारे आउंदा है। अगर परमात्मा दी भुख लेके आ रहे हो ते हुण एक जुट होके रब जी दे राह दे उत्ते चलना शुरू कर दिओ। तौली रावे कोए, अगे कहिंदे ने कर साई स्यो पिरहड़ी, पिरहड़ी दा मतलब हुंदा है प्रेम, कहन लगे अपने साई जी दे नाल प्रेम कर, परमात्मा दे नाल प्रेम कर, रंग नवेला होए तेरे जीवन दे अंदर बहार ही नवी बन जाएगी, रंग ही नवा बन जाएगा, जीवन दे अंदर आनंद ही नवा बन जाएगा। पर कद बन जाएगा जद साई जी दे नाल परमात्मा दे नाल तेरी प्रीत बनेगी, तेरा प्रेम बनेगा। इथे एक बेनती मैं आप संगत दे सामने करदा चला, एक नित नेम करन वाले दा मन, नित नेमी दा मन मैला हो सकदा है। मेरी मुकम्मल बेनती नूं सुनन तो बाद नतीजे दे उते तां पहुंचियो, एक नित नेम करन वाले नित नेमी दा मन मैला हो सकदा है। ते जद कोई नित नेमी नित नेम करदा है, जरूरी ते नहीं कि जिन्ना समा नितनेम चलदा है मन पवित्र ही हुंदा है, मन दे अंदर कोई मैल आउंदी नहीं, मन किधरे तोड़दा ही नहीं, मन दे अंदर मैल बन जांदी है। पढ़ रहे है जपजी साहब, पढ़ रहे है सुखमणी साहब, हत्थां विच गुटका नजरां टिकियां ने बाणी दे उत्ते, जुबान बाणी दा अलाप कर रही है, बाणी नूं जपदी है, मन दे अंदर कोई मैल दी धारा चलदी है, मन दे अंदर कोई मैले विचार चलदे ने। तो मूल रूप विच कह लो कि नित नेमी दा मन नित नेम करदिया मैला हुंदा है। जितने आप नेमी प्रेमी हो, सारे गुरबाणी दा पाठ पठन करदे हो, रौला भी लाउंदे हो, गुरु की ताबिया बह के पाठ करदिया भी पाठी दा मन मैला हुंदा है, खिमा चाहवांगा। मैं उदाहरण बना के अर्ज करनी चाहुंना, पाठ करदिया पाठी दे मन विच मैल आ सकदी है, सेवा करदिया सेवादार दे मन विच मैल आ सकदी है। मैं अपनी गल करां, कथा करदिया करदिया, कथा वख्यान करदिया करदिया मन विच मैल आ जांदी है, कीर्तन करदिया करदिया मन विच मैल आ जांदी है। पर जिस वक्त आप गुरु दे नाल प्रेम कर रहे हो, उस एक पल नूं नोट करके वेखना, उदों मन दे अंदर मैल नहीं हुंदी। हुण इस तरह कह लो, पाठी दा मन नित नेमी दा मन सेवादार दा मन निर्मल हो सकदा है, प्रेमी दा मन मैला नहीं हुंदा, उन्हां दे मन दे अंदर मैल आ सकदी, इत्थे मैल नहीं हुंदी प्रेमी दे मन दे अंदर। जदों तुहाडे मन दे अंदर किधरे सतगुरु जी दे संबंध विच प्रेम दा विचार चले, प्रेम दी निर्मल धारा चले, ते फिर उन्हां पलां नूं नोट करके वेख्यो, मन दे अंदर ना कोई वाश

0: ना निंदा ना चुगली। प्रेम इतना बलवान है कि जदों मन विच आण के वसदा है ते ओ सारिआं नूं इत्थों दुड़ा के बाहर कर दिंदा है, आप ही उत्थे रहिंदा है। पर शर्त यह है कि प्रेम मुकम्मल तौर ते आउणा चाहीदा है। ए नहीं कि चलो माड़ा जिहा विचार आया निकल गया, प्रेम मुकम्मल तौर ते बनना चाहीदा है। प्रेमी का मन मैला नहीं हुंदा। तो भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने कर साईं स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। अपने मन दे अंदर झाती मार के वेखो कि साईं जी दा प्यार है या औगणा दा प्यार है। अगर अपने उत्ते प्रश्न करो कि मेरा प्यार औगणा दे नाल है या परमात्मा दे नाल है, ते जवाब तुहानू आपे मिल जाएगा कि औगणा दे नाल है या परमात्मा दे नाल है। औगण पड़े ने पर खिमा चाहांगा औगण औगण लगदे नहीं, तां औगणा दे उत्ते खड़े आ, औगण औगण लगदे ने। मैरिज कर रहा सना कि एक पागल ते एक समझदार। जिहड़ा पागल हुंदा है ओ रूड़ी दे कूड़े करकट दे मल मूत्र दे ढेर दे उत्ते बह सकदा है। जिहड़ा पागल हुंदा है, जिहड़ा पागल हुंदा है ओ मल मूत्र दे कोल खलो के गीत भी गा सकदा है। ओनू आप उत्थे खलोते नू गंदगी ते खलोते नू हसदिआं वेख भी सकदे हो, उत्थे बह के खा भी सकदा है, उत्थे बह के लम्मा समा वतीत भी कर सकदा है, दिन गुजार सकदा है। पर जिहड़ा पागल है, पर समझदार उसे मल मूत्र दे ढेर कोलों निकलदा है ते नक दे उत्ते रुमाल रख के निकलदा है। उत्थे खलोना ते बड़ी दूर दी गल, नक नूं दबा के निकलदा है। उत्थे खलो के गाउणा, खलो के हसना, उत्थे खलो के खाणा, इह ते बड़ी अगे दी गल। ओह चाहुंदा है कि मैं नक नूं दबा के निकलां, इत्थों दी बदबो दुर्गंधी मेरे तक ना आवे। नक नूं दबा के निकलदा है। पर पुछिए भी क्यों? एक ते बह के उत्थे आनंद मगन नजर आ रहा है, तू नक दबा के निकल रहा है क्यों? बंदा ही कहेगा ना कि वह पागल है, ते मैं अजे पागल नहीं हां, मैं सियाणा, मैं समझदार हां। फिर मैं खिमा मंग लवा, धर्म की दुनिया के अंदर जो बंदा पागल है वह औगणा के कूड़ उत्ते ढेर उत्ते खलोता नजर पैंदा है, ते जो समझदार है उन्हू समझ आ जाती है बदबो है, वह इथों बचन का यतन करता है। ये दुर्गंध है, इथों बचन का यतन करता है। एक सूफी फकीर का बोल मेरे सामने आता है। वह किसी राजे के न्योते दे उत्ते, राजे के बुलावे दे उत्ते चला गया राज महल दे अंदर। ते राजे ने उस फकीर साईं दे रहन वास्ते उचेचा महलां दे अंदर इंतजाम करवाया, उहदे रहन सहन दा प्रबंध कीता, सुगंधियां दे छिड़काव कीते, फुल्लां दीआं माला लटकाईआं, चंदन दी लकड़ी अंदर लिया के रखी, सुगंधी चलदी रहे, इतर फलेल आदि दा छिड़काव कीता। पर एक रात उह फकीर उत्थे रहिंदा है, सवेर सार हुंदिआं सार राजे नूं कहण लगा, राजन मैं तेरे महलां विच रहना नहीं है, मैनूं जाण दी आग्या दे, मैं जाना चाहुंदा। उह कहिंदा बाबा आया से मेरे नाल वैदा करके मैं तीन दिन लगातार तेरे पास तेरे महलां विच रहांगा, पर अजे ते इक ही रात गई, हुणे ही जाण दी तैयारी क्यों? मेरे प्रबंध विच किधरे कोई कमी नजर आई? सेवादारां ने सेवा करन विच कोई कसर छड्डी? या जिथे आप टिके हो उस जगह दे उत्ते कोई साफ सफाई नहीं, इंतजाम शुद्ध नहीं? आखिर क्यों जाना चाहुंदे हो? कोई कारण ते होएगा ना। जब तुहाडा मेरा वायदा सी मैं तीन दिन टिकांगा, दूसरे दिन ही जाण दी गल कर रहे हो, प्रश्न मेरा है, उत्तर आप फरमाओ, क्यों जाण दी तैयारी कीती? ओ हुण फकीर अपने ढंग दे नाल जवाब देंदा है। ओ कहिंदा है राजन तेरे महलां दे अंदरों बदबू बड़ी आ रही है, तेरे महलां दे अंदर दुर्गंध बड़ी है। ते हुण ओह राजा हसदा है सारिआं अमीरां वजीरां नूं राणियां नूं नौकरां चाकरां नूं आवाज दे के कोल बुला लैंदा है। ओह कहण लगा फकीर साईं कहिंदे ने मेरे महलां दे अंदर दुर्गंध बड़ी है, तुसीं वी सारे सूझवान हो, तुसीं वेखो मेरे महलां दे अंदर वाकई दुर्गंध है। चले गए सारे इकट्ठे होके उस साईं जी दे रहण वाली जगह दे पास, जाके वेखे सुगंधियां बड़िया ने, बल्कि चंदन दी लकड़ी भी है, फुल्लां दीआं मालावां ने, इतर फलेल है, तरह तरह दे छिड़काव ने। उह कहण लगा फकीर कोई बहाना होर लाओ जो चल सके, इह सारे वेख रहे ने, जाण रहे ने, नासकावां इन्हां दीआं कम करदीआं ने, सब नूं पता है कि खुशबू सुगंध बड़ी है, दुर्गंधी दा ते नामो निशान नहीं। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਦਬੋ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਖਲਾਉਣਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਬੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਮੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਸੱਜਣੋ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਮੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਰਗੰਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸਕਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਗਣ ਬੜੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬਦਬੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਓ ਪਿਰਹੜੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਗੁਨਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਾਗਲਪਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਝ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਫਰੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰੀਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਹੱਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, आप अपने अपने चित दा मुतालिया करो, चित दी खोज बीन करो, साडे चित दे अंदर चलदा की है। चित साडा इहदे अंदर आखर कुछ ना कुछ चलदा है, पर नजर तुहानू पैना है कि की चलदा है। मैं फिर एक बेनती करा, बाहरों अगर वेखिए ते जितने आप सत संगी हो इन्हां दे बैन दा तल बराबर है, तकरीबन तकरीबन बैन दा अंदाज भी बराबर, एक जगह एक दरबार एक टिकाणा इको गुरु दी हजूरी, इत्थे सारे बैठे हो ना जिन्ने वीर भैणा रल के बैठे हो, पर मन दा तल एक नहीं है, शरीर दा तल सारिआं दा ऐस वक्त एक है, जगह एक है, मन जिहड़ी जिहड़ी जगह ते उह सारिआं दी वक्री वक्री है। हुण सांझे तौर ते किवें कह दईए कि सारिआं दे चित दे अंदर परमात्मा दा चिंतन है या सारिआं दे चित दे अंदर कोई शैतान चलदा है या भगवान चलदा है, किवें कहीए? चित दे अंदर की चलदा है इहदी समझ तुहानूं है ते या अंतर जामी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं है। तुहाडे चित दे अंदर इस वक्त की माला चलदी है? काम भी चल सकदा है, तुहाडे चित दे अंदर क्रोध भी चलदा हो सकदा है, निंदा चुगली ईर्षा बखीली ठगी ठोरी पता नहीं केड़े केड़े विचार मंदे चलदे ने ते केड़े केड़े विचार चंगे चलदे ने, इह ते तुहानूं पता है ना कि तुहाडे चित दे अंदर माला विचारां दी जिहड़ी चल रही है ओह किस तरह दी चल रही, उल्टी चलदी है जां सीधी चलदी है। ते गुरु अमरदास साहिब जी गल चित दी कर रहे ने, कहण लगे गल तेरे शरीर दी नहीं है कि शरीर गुरुद्वारे विच है, शरीर मंदिर मस्जिद विच है, गल तेरे चित दी है कि चित तेरा कित्थे है। ते हुण इह ख्याल तुहानूं रखना पएगा, साडा सारा जोर बाहरों पहरावे दे उत्ते लगदा है, बाहरले भेख दे उत्ते लगदा है, बाहर दे वखावे दे उत्ते लगदा है, खिमा चाहवांगा चित दे उत्ते नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मैं बाहरों बनांगा वो लोकां ने वेखना है ते चित किहड़ा किसे नूं नजर आउंदा है, चित ते मेरे अंदर दी खेड है, चित वल ध्यान ही नहीं है। ते जिन्हां गुरमुखां प्रेमियां दा है उन्हां दा चित समरिया होया मिलदा भी है, उन्होंने अपने आप नूं अंदरों सवारिया है, चित दे अंदर चेता करदे ने ते किन्नू करदे ने, गुणां नूं करदे ने या गुण देण वाले परमात्मा नूं करदे ने। तुसीं नहीं कह सकदे कि इह बंदा अपने चित दे अंदर बड़े माड़े विचार या बड़े चंगे विचार चला रहा है, नहीं कह सकदे बाहरों वेख के, इह उहनूं पता है। ते हजूर कह रहे ने जे को चित करे परमात्मा दा संबंध अपने चित दे नाल बना, बारों बारों संबंध बनिया ते नजर आ रहा है, हाथ विच गुटका है सारिआं नूं दिस रहा है, गुटका फड़ के पाठ करदा है सारिआं नूं दिसदा है, नेत्र बंद करके बह के सुन रहा है, पर तेरा चित ते किसे नूं दिसदा नहीं है। अपने चित नूं आप वेख के ओ जिस गुटके तों अखां बाणी पढ़ रहीआं ने उहदे विच है जां नहीं, अखां बंद ते कीतीआं ने कि मेरा चित कथा विच कीर्तन विच है जां नहीं है। कहन लगे जे को चित करे, अगा कहिंदे ने अपना लाया पिरम ना लगे जे लोचे सब कोए, सब कुछ करन कराउन तो बाद शुभ कर्म भी बंदा करदा रहे, चित करके परमात्मा दा चिंतन भी करदा रहे, चित दे अंदर ओहदे शुभ विचारां दी गुणां दी माला नूं चलाउंदा रहे, ये सब कुछ करन कराउन तो बाद कहन लगे एक अरदास करनी कदी भी ना भुले। पातशाह केड़ी अरदास? ये सब कुछ करन कराउन तो बाद भी तू यही कहिंदे रहना है कि हे निरंकार मेरे यतन मेरे प्रयतन नूं फल तां लगेगा जे तू अपनी कृपा विच मलाएगा। इकला कर्म मंजिल तक लैके नहीं जांदा, उहदे कर्म दी नाल बड़ी जरूरत है, उहदी कृपा दी नाल बड़ी जरूरत है। अगर मेरे कर्म करन करके परमात्मा मिलदा है ते फिर ते मेरे कर्म परमात्मा दा मुल होया, फिर ते कोई भी बंदा कर्म करके परमात्मा नूं पा लवे, 150 साल दा समां खर्च करके रब नूं पा लवे ते फिर ओह बेअंत कादा रहा, ओह जदों वी मिलदा है इधर कर्म ते उधर परमात्मा दी कृपा, इधर मेहनत ते उधर रहमत, पर मेहनत नालों ओहदी रहमत ज्यादा रंग लियांदी है। आखिया कर्म ते कर, यतन ते करके मैं चित विच परमात्मा नूं चेता करां, पर सब कुछ करन तो बाद भी रब जी दे सामने अरदास कर के सतगुरु मेरा प्रेम कीता होया तेरे नाल रंग नहीं लियाएगा जिन्ना समा तू मेरे ते कृपा नहीं करेगा। कहन लगे अपना लाया पिरम ना लगे जे लोचे सब कोए एह पिरम प्याला खसम का जय पावे तैते। सतगुरु ए प्रेम वाला प्याला तेरी दात है, एह दात उन्नू ही मिलदी है जिदे उत्ते तू मेहरबान हो जाना है, जिदे उत्ते तू त्रुट पैना है। फिर परमात्मा दे प्रेम वाली दात ना ते लुटी जा सकती है, ना खोई जा सकती है, ना चुराई जा सकती है, ते ना इनू साड़िया जा सकता है, ना इनू बर्बाद किया जा सकता है। ये दात मिलदी परमात्मा दी रहमत दे द्वारा है, उदी कृपा दे द्वारा। आखिया जय पावे तां दे, खुदा मैं ते कर्म कर रहा पर मेरे कर्म ही कले की करनगे जे तेरी कृपा ही ना होवे, मेरे कर्म की करनगे। आखिया जय पावे तां दे। तीसरा श्लोक भगत फरीद साहब जी दा, कहन लगे फरीदा कु केंदियां फरीदा जिन लोयन जग मोहया, लोयन मैंने अखां, कहन लगे जिन्ना अखां दे नाल जगत नूं वेखदा रहा ते अखां दे वार कर करके जगत नूं ठगदा रहा। कहन लगे जिन लोयन, जिन्ना इन्हां दो अखां ने जगत नूं मोहया सी, से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेखिया। जवानी दे अंदर अखां दी बहार बड़ी सी, बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर अखां दी चमक बड़ी सी, जब बुढ़ापे दे अंदर ना रहे। जवानी दे अंदर इन्हां नूं दूर दूर तक वेखण दी तौफीक मिली सी, बुढ़ापे दे अंदर इन्हां दा वेखणा वी बंद होया। पानी आप मुहारे चलना शुरू होया, अखां दी सुंदरता अपने आप चली गई। भगत जी कहन लगे से लोयन मैं डिठ, उन्हां अखां नूं मैं वेख्या है। कज्जल रेख ना सहंदिया से पंखी सूए बहेट, इन्हां अखां दे अंदर सुरमे दी तारी पैंदी सी, बर्दाश्त नहीं सन करदियां। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਖੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਖੀ ਸੂਏ, ਸੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1: ਫਰੀਦਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ

फरीदा थियो पवाही तब जे साईं लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़ियां है ता साईं दे दरबाड़ियां है।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र कोत दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। भगत फरीद साहब जी दे जो श्लोक अज आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, उन्हां श्लोकां विचों पहला श्लोक फरीदा कु केंद्यां चा गेंद्यां मती देंद्यां नेता, जो शैतान वंजाया से कित फेर चेता। भगत जी कहन लगे जिस दे चित दे अंदर दिन पर रात लगातार शैतान ही वसदा है, बुराई वसदी है, उनू मत्ता देन वाले लख मिलन पर वह किसी की मत लेंदा कदों है, उनू कूक कूक के पुकार पुकार के कोई लख वारी एक गल कह कि इस रस्ते दे उते ना चल, ए बुरा रस्ता है, इस रस्ते दे उते चलदा चलदा ठगिया जाएगा, पर वह किसी की आवाज नू सुनदा ही नहीं है, वह किसी की गल नू मनदा ही नहीं है, तरजीह देंदा ही नहीं है। शैतानियत का इतना वड्डा जोर मन दे अंदर, शैतानियत की इतनी वड्डी लहर मन दे अंदर चलदी कि वह ना मां ना पिता ना किसी उपदेशक ते ना गुरु दे बोल नू सुन के मनन वास्ते तैयार है। कूक ते रहे ने ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, पुकार पुकार के कह रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे, गुरबाणी कह रही है ना जाग रे मन जागण हारे, पर जागण दा नां लेंदा कदों है। कूक कूक के कह रहे ने सतगुरु के जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो पी संग ना होवा। पर की असि इस गल नू सतगुरु दी आवाज नू सुन के मन लिया, साडा मन इस पासे नू मुड़ तुरिया। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहे ने सुख नाही बहुता तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख ना ही बहुत देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पुकार पुकार के कह रहे ने के सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, तो की साडे मन ने सतगुरु दी इस आवाज नू सुन लिया। पुकार पुकार के हजूर कह रहे ने नर अचेत पाप ते डर रे, ते गुरु कह रहे ने नर अचेत ए बेहोशी दे अंदर चलन वाले मनुख पाप ते डर रे, पाप करन लगा संकोच कर पै खा ना कर, तो की साडे मन ने ए आवाज सुन ली। जद बंदे दे मन दे अंदर शैतानियत चलदी होवे, कोई भी शैतानी दा वेग चलदा होवे, काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगले, ते बंदे नू ओही कुछ ही प्यारा लगदा है। जद ओनू असी प्यार कर लैने आ ते फिर ओनू छड्डन दा ते सवाल नहीं पैदा हुंदा, क्योंकि असी प्यार कर लिया है बुराई दे नाल, ते जद बुराई दे नाल प्यार बाणी गया है ते हुण फिर बुराई नू छड्डांगे क्यों। मन ओनू कदी वास्ते भी छड्डन वास्ते राजी नहीं हुंदा जिदे नाल ए प्यार दी गंढ पा लवे, ते ओनू कदी अपना बनाउण वास्ते तैयार नहीं हुंदा जिन्नू मन प्यार ना करे, मन परवान ना करे। निरंकार दे संबंध विच मंदरां मस्जिदां गुरुद्वारियां दे अंदर कथा कहानियां चलदियां ने, मन निरंकार दे राह दे उत्ते नहीं तुरदा। क्यों नहीं तुरदा? क्योंकि मन अजे गुरबाणी दे बचना दे नाल निरंकार दे नाल प्यार बनाया ही नहीं है। मन इस राह दे उत्ते तां नहीं तुरदा क्योंकि मन ने अजे तक मन्या नहीं है, मन दी प्यार वाली तंद प्यार वाली गंढ अजे बजी नहीं है।
तो जिस दे नाल मन प्यार कर लेंदा है ओनू हर हालत दे अंदर अपना बनाउना चाहुंदा है, जिदे नाल प्यार ना करे ओनू छड देंदा है, ये मन दा सुभाव ओनू छड देंदा है। अगर परमात्मा दे नाल मन दी सांझ बनदी नजर नहीं आ रही कथा कीर्तन करन तो बाद या सुनन तो बाद ते ए कहना पएगा कि मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू है, मन परवान नहीं करदा कि निरंकार तू सर्व व्यापक है, तू सुख दा दाता है, तू नेड़े तो नेड़े है। मन जे नहीं मनदा, मन्या होएगा साडी जुबान ने, सुनिया होएगा कन्ना ने, मन ने नहीं मन्या। गुरबाणी दे अंदर एक वचन इस तरह भी आंदा है, पातशाह कहिंदे ने पाप बुरा पापी को प्यारा है, ता पाप बुरा पर पातशाह कहिंदे ने करिए कि पापी नू प्यारा बड़ा लगदा है। ते हुण पाप जिस पापी नू प्यारा लगदा है वो प्यारी चीज नू छड्डेगा कदों? प्यारी चीज नू ते घुट के मन हथ पा के पकड़ लैंदा है, छड्डदा नहीं। पाप बुरा पापी को प्यारा, गलतियां प्यारियां लगदियां ने, मुड़ मुड़ के बंदा उही गलतियां दोहरा रहा है। इस तरह ते नहीं कि अज गलती कीती है कल नहीं करदा, एक गलती नू हजारां बार दोहरा रहा है क्योंकि वह गलतियां प्यारियां लगदियां। गुरबाणी दे बचन प्यारे नहीं लगदे, दोहराउण तो गुरेज कर जांदा है, ते जिन्हों प्यारे लगदे ने वह मुड़ मुड़ के गुरबाणी दे बचना नू भी दोहराउंदा है। एक ही गुना साडे जीवन दे अंदर कई कई वार हो चुका है, इहदा कारण की है? असीं तौबा भी कर लैने आ, दो हाथ जोड़ के खिमा भी मंग लैने आ, एक वार मुआफी, कल ये गुनाह नहीं करांगा, पातशाह अज बख्शो कल ये भुल नहीं करांगा, पर कल आउंदा है ते ओही भुल फेर हो जांदी। अज अखां नूं वार वार रोकिया है, अखां ने बुरे पासे नहीं वेखना, कल नूं फेर वेख रही है, अगले दिन फेर वेखणगियां। इह सिलसिला लगातार जारी रहिंदा है क्योंकि मन जिधर वेखदा है ओनू प्यार बड़ा करदा है, ते जिन्हों प्यार करदा है ओनू मन वार वार सुनना भी चाहुंदा है, मन वार वार बोलना भी चाहुंदा है, मन वार वार वेखना भी चाहुंदा है जिन्हों प्यार करदा है। ते जिन्हों प्यार नहीं करदा ओनू ना ये सुन के राजी है, ना बोल के राजी है, ना ओनू वेख के राजी है, क्योंकि प्यार नहीं। पाप दे नाल अगर प्यार है तो पाप मुड़ मुड़ के आंदा है, परमात्मा दे नाल प्यार है ते परमात्मा दी याद भी मुड़ मुड़ के आउंदी है, दुबारा दुबारा आउंदी है। तो अज दे समाहा वाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी कहन लगे, फरीदा कूकेंदिया कूकदिया जागेंदिया उची उची पुकारदिया, कहन लगे मत्ती देंदिया नित निता प्रति मत दी गल सुनाई है, निता प्रति किसे नू उपदेश देईए, कहन लगे जो शैतान वंजाया, जिन्हां दे मन दे अंदर आण के शैतानी वस गई है, शैतान ने जिन्हां नू खजल खुवार कीता है, से कित फेरे चित, वो अपने चित नू रब वल फेरदे ही नहीं है, रब वल मोड़दे ही नहीं है। कथा कहानियां करनिया सुननिया आसान ने, पर चित नू परमात्मा दी तरफ मोड़ लेना यही कठिन है और यही महान है, यही साधना है। कहन लगे से कित फेर है चित, साडा चित मुड़ मुड़ के बुराई वल नू जांदा है क्योंकि बुराई दे नाल साडा तालमेल बनदा है, इधर लियाउणा पैंदा है जबरदस्ती क्योंकि इधर तालमेल बनदा नहीं है। काम दे नाल तालमेल बनदा है, मन काम दी गल नू सुणदा भी है, काम बोलदा भी है, काम वेखदा भी है, काम लिखदा भी है, काम सोचदा भी है, क्योंकि उहदे नाल तालमेल बड़ा है। इस तो अगे लोभ, फिर इस तो अगे मोह, फिर हंकार, फिर निंदा, फिर चुगली, फिर तमाम बुराइयां, इन्हां नू अगर मन मुड़ मुड़ के कर रहा है तो यही कहना पएगा कि चित दे अंदर माला बन के चल रहे ने, इन्हां दा तालमेल साडे मन दे नाल है, ते जिहदे नाल साडे मन दा तालमेल बन जाए ओनू सुणदिआं बोलदिआं लिखदिआं मन उकताउंदा भी नहीं है, मन दुखी भी नहीं हुंदा। ते जिथे तालमेल ना बने उथे मन बैन तो गुरेज करदा है, दुखी हो जांदा है। कदी कदी मैं वेख्या संगत दे अंदर बैठदिआं इवें लगदा है जिवें समा बड़ा भारा हो गया है, इस तरह लगदा है जिवें समा बजर वर्गा हो गया, समा पास हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कथा दे नाल मन दा तालमेल नहीं है,
ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਦੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੌੜਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਦਿਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਰਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚਣੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੈ ਚਿਤ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਥੀਓ ਮੈਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਪਵਾਹੀ ਮੈਨੇ ਪਇਆ, ਪਇਆ ਮੈਨੇ ਸੜਕ, ਸੜਕ ਮੈਨੇ ਰਸਤਾ, ਦੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਾ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੀਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਵਾਹੀ ਦੀ ਦੱਬ ਬਣ ਜਾ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਬ ਬਣ ਜਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਲੜ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਚਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
मुकाम ते पहुंचन वास्ते ते मेहनत दी लोड़ है। एक बच्चा पढ़ रहा है, दिन पर रात एक करके पढ़ रहा है, मां बाप का पैसा खर्च करता है, अपना समा वो खर्च करता है ताकि मैं डॉक्टर बन जावा। ते जे डॉक्टर बनी गया है ते फिर करना दी लोड़ किथे रहेगी, किताबां दे नाल मगजमारी करन दी लोड़ किथे बचदी। आप चलदे चलदे गुरुद्वारे पहुंच ही गए हो, बात चल रही ठंडी हवा पै रही बरसात, एदे तो तुहाडा बचाव हो ही गया, तो हुण इत्थे आण के चलन दी लोड़ किथे रह गई, इत्थे आण के ते टिक के बहना है। इस तरह ते नहीं कि हाल दे अंदर हुण कदम दर कदम टहलदे रहिए चलदे रही, इत्थे आण के ते बहना है। मतलब मेरा मेहनत पहला करनी पैंदी है, मंजिल बाद विच मिलदी है। बीज पहला बीजना पैंदा है, फल बाद विच मिलदा है। दीवारां पहलां खड़ियां करनियां पैंदियां ने, छत बाद विच पैंदी है। कर्म पहलां करना पैंदा है, किस्मत बाद विच बनदी है। और कर्म तो ही किस्मत बनदी है, किसे वक्त मैं रज गुजारांगा, कर्म तो ही किस्मत बनदी है। भाई गुरदास साहब ने बड़ा अजीब जे तरीके दे नाल सतगुरु दे संबंध विच इह गल कह दित्ती, पहलों बाबे पाया बख्शदार। पहला बाबे ने, बाबा इशारा कर रहे ने गुरु नानक साहब जी वल, पहला बाबे ने निरंकार दा दर पाया है, बख्शिश दा दर उन्हां नूं मिलिया है। पिछों दे फिर काल कमाई बाद विच ओह कलना कलदे रहे, मेहनत करदे रहे, ते कहन लगे रेत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी विछाई। इस गल नूं जरा समझण दी कृपा कर लियो, बख्शिश दा मिल जाना काफी नहीं, उन्हूं संभाल के रखण दी जांच भी होनी चाहीदी है। धन दा कमा लेना या धन दा जेब विच आ जाना, धन दा मिल जाना काफी नहीं, धन नूं संभालण दी जांच भी होनी चाहीदी है। अगर आप 500 डालर रोज दा कमा रहे हो उदाहरण वजों, ते 500 डालर ही घर आउण तों पहलां पहलां रस्ते दे अंदर कैसीनो दे अंदर जाके जुए दे अड्डे ते जाके 500 दा 500 उजाड़ आउंदे हो, ते फिर तुहाडे कमाई दा अर्थ की होया। अगर 500 ही रस्ते विच बर्बाद कर आउंदे हो, लुटा आउंदे हो, ते कमाई दा फिर मैना की, कमाई दा अर्थ की? फिर सारा दिन शरीर तोड़ के मेहनत करन दा अर्थ की होया? ना कीती कीती दे बराबर हो गई, कीती ना कीती दे बराबर हो गई। हजूर गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी नूं बख्शिश ते मिल गई है निरंकार कोल, और बहुत वड्डी मिल गई है, बख्शिश सब तों वधीक मिल गई है। उस बख्शिश नूं संभालना किवें है, उह साडे वास्ते कलना कालदे रहे कि बख्शिश नूं संभालना पैंदा है निर्माण बन के, अति गरीब बन के, अति नीवा हो के, पिछों दे फिर काल कमाई। अगर भांडा ही कोल नहीं है तो बख्शिश रहेगी कित्थे, संभालांगे कित्थे, भांडा ते कोल होना चाहिए ना। तो बख्शिश नूं संभालन वास्ते पातशाह मेहनत मुशक्कत ते निर्माणता दे दौर विचों दी निकलदे रहे। गरीबी परमात्मा दी बख्शिश नूं संभालन वास्ते बर्तन है, ते बाहर दी गरीबी नहीं अंदर दी गरीबी। मैं साफ लफ्जां विच अर्ज करां निम्रता, निम्रता रब जी दी बख्शिश नूं संभालन वास्ते भांडे दा काम करदी है। बख्शिश रोज रोज हुंदी जाए, निर्माण बंदा बने ना, बख्शिश आउंदी जाएगी, चली जाएगी, टिकेगी नहीं। क्योंकि टिके किथे, टिकण वास्ते बख्शिश नूं कोई जगह ही नहीं मिल रही। भांडा चाहिदा सी, भांडा निर्माणता दा, ओह भांडा ते पास है नहीं, टिके किथे। तो खैर इस तरह भी जिक्र आउंदा है कि पीर दस्तगीर दी जदों मुलाकात होई साहिब गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दे नाल, तो पीर दस्तगीर गुरु नानक साहब जी तो बड़ा मुतासर हुंदा है, बड़ा प्रभावित हुंदा है। तो अखीर विच आके पीर दस्तगीर एक प्रश्न कर देंदा है हजूर दे सामने, कह देंदा है, ए नानक तपा जी, मैं तुहाडे उत्ते बड़ा खुश होया। लम्मी चौड़ी दास्तान है, मैं अखीर दे पॉइंट दे उत्ते पहुंच के अर्ज करना चाहुंदा। पीर दस्तगीर कहिंदा, नानक तपा जी, मैं तुहाडे उत्ते मेहरबान हां, मैं तुहाडे उत्ते बड़ा खुश हां, मंगो, की मंगना चाहुंदे हो? पातशाह कहन लगे, कोई कसर बाकी नहीं है तो फिर मंगीए की? कोई कमी दिसदी होवे ते मंग तां ही बनदी है ना, अगर कमी नहीं, कोई लोड़ नहीं, ते मंग पैदा हुंदा ते कोई कारण नहीं। जितनियां साडियां मंगा बनदियां ने, ओह लोड़ां नूं वेख के, अधूरेपन नूं वेख के, कमी नूं वेख के। पूरे मनुख दी की मंग होएगी? कुछ भी नहीं, मंग ते अधूरे दी हुंदी।
आख्या पीर जी परमात्मा दा दिता होया बहुत कुछ मेरे दमन दे अंदर है, कुछ लोड़ ही नहीं है, बहुत कुछ दे के निरंकार ने नवाजे है। दूजी बार फिर कह देता पीर दस्तगीर ने, नानक जी कुछ ते मंगो, मैं देना चाहना कुछ ते मंगो। पातशाह कहन लगे कुछ भी तमन्ना बाकी नहीं है, लोड़ ही बाकी नहीं है। पीर हैरान होके कहन लगा नानक तपा जी मेरे कोल ते लोग रोज रोज आउंदे ने, इबादत करदे ने, अरदास करदे ने, हाथ जोड़दे ने, नक गोडे रगड़दे ने, तरले मिन्नतां करदे ने, कुछ सानू दिओ, असीं उन्हां नू जल्दी करके कुछ देंदे नहीं आ, मैं आप देना चाहना तुसी कुछ लेंदे नहीं। किस तरह दे तुसी मनुख, मैं देना चाहना तुसी झोली नहीं फैला रहे, कुछ लेना ही नहीं चाहते। तीसरी बार मैं तुहानू फिर कह रहा मेरे कोलों कुछ मंगो, मैनू दे के खुशी होएगी। किसे नू दे के खुशी होंदी है? हमेशा ही चंगिया पुरशा नू। ए वी ख्याल करियो, किसे दे खो के कारोबार खोना, जान खो लेना, इज्जत खो लेनी, किसे नू बर्बाद करके खुशी होंदी है? बदबख्त बंदे नू, जेड़ा खोटा बंदा है, किसे नू दे के खुशी होंदी है? ताने पुख्ता मजाज ते तजर्बेकार सजना, किसे नू दे के बड़ी खुशी होंदी। कहिंदा मैं देना चाहना तुसी झोली क्यों नहीं फैला रहे, कुछ मंग क्यों नहीं कर रहे। हुण गुरु नानक देव पातशाह तीसरी बार कहिंदे ने, अच्छा पीर जी जे देना ही चाहुंदे हो ते फिर निम्रता दिओ, मैनू गरीबी लैके दिओ। इतिहास दे पन्ने कहिंदे ने कि पीर दस्तगीर नेत्र बंद करके अल्लाह ताला खुदावन दे चरणा विच अपनी सुरत नूं जोड़दे ने। इतिहास दे पन्ने इस तरह कहिंदे ने, तो मंग करदे ने, हे खुदा मैनू कुछ गरीबी चाहीदी है, मेरे कोल अज नानक तपा जी आए ने, गरीबी मैं उन्हां दी झोली विच पाउणी चाहुंदा, गरीबी मैं उन्हां नूं देनी चाहुंदा। आवाज आउंदी है पीर दस्तगीर, सारी गरीबी दा मालक नानक पहलां तों ही है, मेरे कोल कुछ भी बाकी नहीं, सारी गरीबी दा मालक नानक पहलां तों है। इतनी गरीबी हुंदिया होया इतनी निर्माणता कोल है, ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी जगत जलंदे नूं ठारण वास्ते तुर पैंदे ने। बड़े बड़े कठिनाइयां दा पत्थर मनुखां दा सामना करना पैंदा है, लोकां कोलों दुर बोल सुनने पैंदे ने, इट्टां वट्टे खाने पैंदे ने, पर सतगुरु कौड़ा फिक्का बोल क्यों नहीं बोलदे? उस गरीबी दे कारण, निर्माणता दे कारण। ठीक दूसरे पासे असीं गरीब अंदरों नहीं आ, अंदर साडा हंकारी है, अंदर साडा अपने आप नूं बहुत वड्डा समझदा है। साढ़े सामने आण के कोई मामूली जिहा तत्ता बोल बोलदा है, गर्म बचन बोलदा है, ते मामूली साढ़े अंदर दी अग लट लट करके बलनी शुरू हो जांदी है। मामूली जिहा कोई कौड़ी अख करके माड़ा जिहा साढ़े वल वेख लवे ना, ते साडी अख दे अंदर सूर दा बाल आ जांदा है, उहदे नाल चार गुणा अखियां नूं कौड़ियां कर लैंदा है। कोई मामूली जिहा कौड़ा फिक्का बोल बोलदा है, ते साडी जुबान दे जिहड़े बोल निकलने शुरू होंदे ने, उहदे नाल चार गुणा ज्यादा कौड़े। कारण की है? अंदर गरीबी ते है नहीं, ते गरीबी नहीं ते फिर अपने विषय दे नाल जुड़ो परमात्मा दी बख्शिश नहीं, बख्शिश नूं संभालोगे किवें गरीबी दे नाल? तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, थियो पवाही दब, पवाही मैंने पहया रस्ता। कहन लगे हो जा, ते की हो जाना है? दब हो जा, का बन जा, कच्चे मार्ग दा, कच्चे रस्ते दा घास बन, दब बन, थियो पवाही दब। भगत फरीद साहब जद इना जोर दे के कहन के तेनू का वर्गा बन जाना चाहिदा है, दब वर्गा बन जाना चाहिदा है, ते फिर प्रश्न ते कर सकने हैं ना कि भगत फरीद जी क्यों किस लई कह रहे हो कि दब वर्गा बन जा? कहन लगे जे साई लोड़ है सब, साई मैंने परमात्मा लोड़ा, मैंने लभना चाहना है, ते सब मैंने सारिया विचों। कह लगे जे साई दा दीदार करना चाहना है, ते वह भी जरे जरे विचों सारिया विचों, ते फिर अति निर्माण होना पेगा दब वर्गा। जे साई लोड़ा है सब, साई है ता सब दे अंदर, पर साडी एक कड़चन है, सानू सब दे अंदर नजर आउंदा नहीं है। साई है सब दे अंदर, पर साडी मुश्किल यह है ना, सानू अपने विच दिसदा है ते ना बेगाने विच दिसदा है। दूसरा सानू हमेशा काफर ही दिसदा है, दूसरा सानू हमेशा बुरा ही दिसदा है, ते जे चंगा दिसदा है ते अपना आपा ही दिसदा है, जद के चंगा आपा अपना आपा बनाया भी नहीं है।
मैं अक्सर एक बेनती करया करदा और थोड़ा जे एकागर होके समझन दी कृपा करियो। बंदा अपने आप तो संतुष्ट है, परमात्मा तो संतुष्ट नहीं है। जो मेरे पास है मैं उदे तो संतुष्ट हाँ, जो मेरी अकल है अपनी अकल तो संतुष्ट है, अपनिया बुराइया ते उते संतोख है, बुराइया ते संतुष्ट है। अगर ऐ संतुष्टि बन जाए कि मैं अधूरा हाँ, फिर ते ए अपने आप नू पूरा करन दा यतन करेगा ना, जे समझ आ जाए कि मैं अधूरा हाँ। पर अपने अधूरेपन दे उते नू संतुष्टि आ गई है, अपने अधूरेपन नू दूर करन दा यतन तां नहीं करदा। अगर ये समझ आ जाए कि मैं बुरा हाँ, ते फिर ते बुराई नू छड़ के चंगियाई दे राह दे उते चल पाएगा। पर ए अपनी बुराई दे उते सहमत हो गया, बुराई दे उते संतुष्ट हो गया, अपनिया बुराइया दे उते भी संतुष्ट है, ते कमाल दी गल है रब दीआं चंगियाइयां दे उते भी संतुष्ट नहीं है। रब रोज दे रहा है, निता प्रति दे रहा है, असी उन्हूं मनदे आ नहीं मनदे उह तां वी दे रहा है, ते निता प्रति पल पल देना उहदा सुभाअ है, उह अपने सुभाअ नूं पाल रहा है, पर असी फिर भी संतुष्ट नहीं है। तू मेरे गवांडी नूं ज्यादा दे दिता है, मैनू घट क्यों? तू दूसरे नूं ज्यादा दिता है, मैनू थोड़ा क्यों? मैं इतना पाठ पूजा करन वाला हां, नितनेमी हां, मेरा दामन अजे भी खाली है, पर क्यों प्रश्न करने हैं वार वार क्यों? खिमा चाहांगा, अपने अपने मन दे अंदर झाती मार के वेखो, जदों भी मन इत्थे आउंदा है शिकवे नाल लेके आउंदा है, मैनू ऐ नहीं मिलिया, मैनू ऐ नहीं मिलिया, मैनू मिल जाना चाहिदा सी। ते शिकवा पता कदों बनदा है? मैं किसे वक्त खुल के इस विषय दे उते आप संगतां दी सेवा करांगा, पर इशारतन बेनती, शिकवा इतराज पता कदों बनदा है? जद मन विचों आवाज आए कि मेरी झोली ते बड़ी वड्डी है, पर ऐ देण वालिया तू झोली विच पा कुछ क्यों नहीं रहा? झोली मेरी खाली पई है, तेरे ना देण दे कारण मेरी झोली बड़ी चंगी है। साध्यां लफ्जां विच बिने करां, मेरे कर्म ते बड़े महान ने, पर तू मैनू मेरिया कर्मां दे विच दे की रहा है? कर्म मेरे बड़े महान ने, मेरे कर्मां दे बदले तू मेरी झोली विच पा की रहा है? इतराज बनेगा। तो जद बंदे नू अपनी बुराई दे उते संतुष्टि ना बने, माने कहे के तू बड़ा खोटा है, तू बड़ा नीच है, तू बड़ा बुरा है, तू बड़ा व्यभिचारी है, बड़ा कामी है, तो फिर ते इतराज बनन दा कोई कारण ही नहीं, मतलब बनदा ही नहीं। तो खैर, भगत फरीद साहब जी कहन लगे, थियो थियो मैंने हो जा, थियो पवाही दब। ते पुछया, भगत जी क्यों इना जोर दे के कह रहे हो कि दब वर्गा बन जा, रस्ते दे कच्चे रस्ते दे कास वर्गा बन जा? कहन लगे, जे साई लोड़े सब, जे परमात्मा नूं साई नूं सारिया दे अंदर वेखना चाहना है, लब लेना चाहना है, ते कहन लगे फिर दब वर्गा बन जा, अति निर्माण। एक बेनती मैं इत्थे होर करदा चला, जिस साई दा बाबा फरीद साहब जी साडे सामने जिक्र कर रहे ने, उह साई वाकई जरे जरे दे अंदर समाया है। इस तरह नहीं है कि शमान दे अंदर कोई वखरा सचखंड है ते परमात्मा उस सचखंड दे विच रहिंदा है। इस तरह नहीं है कि उह साई हजूर साहब दा मालक है या अमृतसर साहब रहिंदा है ते तुहाडे कोल नहीं रहिंदा, जां उह साई कल्ला मक्के दा वासी है ते इस कायनात विच नहीं है, जां उह साई बनारस दा वसनीक है पर इत्थे नहीं है। गुरबाणी पढ़द्या पढ़द्या, आप सारे गुरबाणी दे रोज दे श्रोते हो, गुरबाणी पढ़द्या पढ़द्या मैनू कदी भी इस तरह दा कोई संकेत नहीं मिलिया जिस बचन दे अंदर पातशाह ने एक गल कही होवे कि परमात्मा सतवें शमान दा मालक है, परमात्मा तुहाडे तो बहुत दूर रहिंदा है। गुरबाणी नू जदों भी पुछोगे कि रब जी कित्थे रहिंदे ने, ते गुरबाणी रब दा एड्रेस, रब दा अता पता इस तरह ही बयान करदी है, घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। गुरबाणी इस तरह ही कहिंदी है, जल थल, जल थल महियल, जलां दे अंदर थलां दे अंदर, ते महियल कहिंदे ने स्पेस दे अंदर। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजनहार, अनिक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार। गुरबाणी ते उस परिपूर्ण परमात्मा दा पता इस तरह बयान करदी है। होर बेनती करां,
ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ ਨੁਕਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਰਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਜੋ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਤਬ ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਲੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਹੈ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੱਬ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਛਿੱਜੇ, ਕਈ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੀਆ ਬੀਆ ਮੈਨੇ ਦੂਜਾ ਲਤਾੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉਛਲ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਣੀਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਘਾ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਕਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੱਬ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਣ ਬਣ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ। ਖਾਕ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਕ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਖਾਕ ਉੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਕ ਤੇ ਬਣੋ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੋ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਹਾ ਚਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ, ਅੱਜ ਰਾਹਾ ਚੁਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਕ ਉੱਡੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਕ ਉਹ ਬਣੇ ਨਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जीवन दे अंदर पाठ पूजा करो, रब जी नू याद करो, पर किसे नू पता भी ना लगे कि तुसी की करके आए हो, की कर रहे हो, तुहाडे अंदर केड़े गुण ने। पर यह चलना की होया कि एक बंदे दे उत्ते परोपकार कीता ते 100 बंदे नू राह रोक रोक के समझाया कि अज मैं फलाने दा भला कर दिता, अज मैं फलाने नू ए दान दे दिता, अज मैं फलाने दा ए कार्य

अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तिन्ना सजना तुटो नहीं ने हो पिजो सिजो कंबली अल्लाह वर्षों में हो जाए मिला तिन्ना सजना तुटो नहीं ने हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप लड़ीवार कथा सरवण कर रहे हो भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों। भगत फरीद साहब जी दे दो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए और ये दोवें श्लोक बड़े डूंगे ने, बड़े रहस्यमय ने। अगर उपरों उपरों अर्थ करोगे तो मन दुबदा दे अंदर अवच जाएगा। गहराई दे अंदर जाके मुतालिया करोगे ना दोवां श्लोकां दा तो गल स्पष्ट हो जाएगी भगत जी कहना की चाहते ने। पहला श्लोक है फरीदा गलिए चिकड़। एक एक अखर बड़ा रहस्यमयी है। कहन लगे गलिया दे अंदर चिकड़ है। आरंभ विच मैं एक बेनती होर करदा चला, गुरबाणी नू एक्सप्लेन करन वाला, गुरबाणी दे अर्थ भेद खोलन वाला

ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ, ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़ियां दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै उतरसके है। ये बाहर दी मैल है, अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोतै पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिए मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना वह पाप आया, अपराध नहीं आया इस जगह दे उत्ते। इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है पावे दोवे गुना दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असी शुरू कर देने आं उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करने वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी का मखौटा बना के उन्होंने बधाई देने दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है, ये जानता है कि खुशी का मखौटा कदों पाउणा है ते कमी का मखौटा कदों पाउणा है। खैर ये मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उहदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उहदा नाम अपराध। बस एक नुकता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबा दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं, पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ़ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कह रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कह रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनू लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा? ठीक है लोगों के सामने इनी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जाता, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता का मुल ता ही पैंदा है जे मन सुचा हो। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता का ते बारी सुच का कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिए, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे की वाधू सोचे मैं ओदी गल कर रहा।

रब ना पूजन तुद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी घने सहनगे दुख।

सुहागने जो पावे बेपरवाह सोहरे पे ये कंत की कंत अगम यथा नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज ना सुती कंत सिओ अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते पावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नू गोला ते परमात्मा नू मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नू महबूब जानिया और अपने आप नू महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नू महबूब मन्नदे ने अपने आप नू महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत सिओ कंत मैने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे तन ने ते मर भी जाना है मुक भी जाना है तन बिरद भी हो जाता है तन सड़ भी जाता है तन पसम भी हो जाता है। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उत्ते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं
अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़े जाए मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी उनु मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा हुंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नु आराध नहीं सकिया। अज ओ रस भी नहीं बनिया, ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਸ ਰੋਜ ਰੋਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਰੋਜ ਰੋਜ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ, ਮਨ ਕਲਪੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਰੋਜ ਰੋਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ ਰੋਜ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਸ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੀ? ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ ਪਾਹੁਣ ਮੈਨੇ ਪਰਾਉਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ। ਤੋ ਅਰਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ, ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਫਲਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰਸਾ।
क्योंकि जीवन चलना है किसी रस दे आसरे ते। रस मिलदा है सानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार विचों, रस मिलदा है सानू परिवार विचों, रस मिलदा है पदार्थ विचों। हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे ते शरीर दी तंदुरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरस है। इस तरह दा मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह दा मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम। वो कहिंदा है कि हुण अपने आप दी हत्या कर ली है, आत्म हत्यारा बन जाना चाहिए है, अपने जीवन दी लीला अपने हथां दे नाल समाप्त कर लेनी योग है। पुछिए क्यों, वो कहिंदा है जद जीवन दे अंदर रस ही नहीं तो जीवन रख के करना भी की है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है, ते फिर उस तो बाद पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी ते कोल नहीं। तो जद कुछ भी पास नहीं तो हुण जीवन नूं भी पास रख के की करना है, इहनूं खत्म कर लईए तां कि दुखां तों छुटकारा हो जाए। पर बड़ा वड्डा इक भरम है, अगर आत्म हत्या करन दे नाल जां मर जाण दे नाल दुखां तों छुटकारा हुंदा तो फिर जो जन्म लैंदिआं सार कुछ बच्चे अपाही जन्म लैंदे ने, लूले लंगड़े जन्म लैंदे ने, नेत्रहीन जन्म लैंदे ने, कमले जन्म लैंदे ने, फिर ये जन्म क्यों ले रहे ने? आखिर किसी ना किसी कर्म का फल ही इन्हां नूं मिल रहा, किसी कर्म के फल कारण ही ते लूले लंगड़े अपाहिज नेत्रहीन या बावरे जन्म लैंदे ने। मरण तो बाद दुखां का छुटकारा नहीं है, दुखां का छुटकारा करने वास्ते सानू मिलिया है जीवन। जो मरते दम तक दुखी रहा, दुख दे विच जीवन चलाउंदा रहा, मरण तो बाद एकदम दुख किवें मुकेगा? अगर मरण तो बाद दुख मुक जांदा है फिर ते किसे पाठ पूजा कथा कीर्तन भजन बंदगी दी लोड़ भी की है, क्योंकि मरना भी सारिया ने है ते दुख भी सारिया दा गलों लै जाना है, मुक जाना है, फिर लोड़ की है तमाम चंगे कर्म करन दी, पाठ पूजा भगती दे राह ते चलन दी फिर की लोड़ है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा मनुख दा जीवन चल रहा है किसे ना किसे रस दा बजा होया। हुण दूसरी बेनती, रस भावे संसारी होवे ते रस भावे निरंकारी होवे, बड़े ध्यान नाल मेरी इस बेनती नूं समझण दी कृपा कर लियो। बेशक रस दुनियावी है ते बेशक रस धर्म दी दुनिया दे उत्ते चलदियां चलदियां मिलिया है, रस रब्बी है या रस संसारी है आम दुनिया विचों मिलिया। रस दी समझ उन्नू ही हुंदी है जिन्हें रस नूं जानिया है, जिन्हें रस नूं चखिया है, जिन्हें रस नूं चखिया नहीं उन्नू रस दी समझ पाएगी भी कि। आप गुरुद्वारे आए हो, गुरुद्वारे दे अंदर चंगे चंगे खाण वास्ते पदार्थ बन गए, लड्डू मठियाई जलेब बन गए, पकौड़े बन गए, दाल सब्जी बन गई, प्रशादा पूरियां बन गए, बड़ा कुछ बनिया, तुसी ए प्रशादा छकिया, तुहानू समझ पई कि प्रशादा स्वाद सी जां नहीं स्वाद सी, प्रशादे दा आनंद बड़ा लिया। तुसी हुण घर दे अंदर जाके अपने परिवार दे बाकी मैंबरां नूं लंगर विचों मिले हुए रस दे बारे समझाउणा चाहो कि अज दा लंगर बड़ा रस वाला सी, बड़ा स्वाद वाला सी, तो कि ए दो लफज परिवार दे सामने बोलन करके परिवार नूं लंगर दा रस मिल जाएगा, या लफजां दे विच लंगर दा रस परोस के परिवार तक पहुंचाया जा सकदा है इन्हां लफजां दे अंदर। चलो मैं एक होर बेनती करा, खादा तुसी है, रस नूं तुसी जानदे हो, जिन्हें सुनिया है उन्हूं रस दे बारे समझ नहीं पई। हां वो सुन के गुरुद्वारे आ जाए लंगर छक लै ते उन्हूं समझ पै सकदी, कला सुनन दे नाल नहीं। रब नूं जिन्हें जानिया है रब दे नाल जुड़न दा रस उन्हूं ही मिलिया है, उन्हें चखिया है, उन्हें जानिया है। हां ये ठीक है कि जिन्हां ने रस नूं चखिया है वो सानू सुना रहे ने कि रब जी दे नाल मिलन दा रस इस तरह दा हुंदा है, उन्हां कोलों सुन के असी रब्बी रस नूं पाउण दा यतन प्रयत्न कर लईए ते असी भी जान लवांगे रस इस तरह दा हुंदा। सुन के कहानी खत्म कर दईए रस नहीं मिलेगा, सुनन तो बाद
रस मिलदा हुंदा ते दुनिया सारी सुन रही है हजारां दी गिनती दे अंदर श्रोते ने पर जीवन बेरस ही नजर आ रहा है रस भरपूर नजर नहीं आ रहा। घरां दे अंदर बेरसी अपने मन दे अंदर बेरसी परिवारां दे अंदर बेरसी एक घर दे सीस महल दी चार दीवारी दे अंदर रह के भी कोई आनंद मगर नजर नहीं आउंदा बेरसा जीवन बतीत कर रहे ने सब लोग विरलिया विरलिया नूं छड के। कारण कारण है कि परमात्मा दा रस जानिया ही नहीं। खैर होर मैं बेनती कर रहा सां भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आउंदा है भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आया जिस मूड दे उते आके भगत खामोश हो गए एवे कह लो बिल्कुल चुप धारण कर गए। ते साडी दुनिया दा दस्तूर ए है कि दो जने आपस दे अंदर बोलदे होण उत्तर प्रश्न करदे होण सवाल जवाब करदे होण दोवां विचों एक बोली जाए दूजा चुप कर जाए ते साडी दुनिया दा मनना है जिहड़ा चुप कर गया इहनूं कासे दा पता नहीं होना जवाब देण जोगा मटीरियल नहीं होना ते या इहनूं कुछ ज्ञान नहीं जो खामोश है जो जवाब नहीं दे रहा। आम दुनिया ही सोचदी अगर यह सच्चा हुंदा ते अगों बोलदा ना जवाब देंदा ना। भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आया जिथे जाके भगत बिलकुल हार गए मैं लफज ना वर्तन योग वर्त रहा भगत हार गए दुनियादारी दे तौर दे उते भगत चुप कर गए है ते भगत जेतू पर दुनिया दे सामने उन्हां नूं चुप करन ते मजबूर होना पिया। सारा बनारस एक सुर दे अंदर प्रश्न करदा है कि कबीर साहब रविदास साहब जे तुसी रब जी दे नाल अपने मन नूं जोड़ के रस नूं पा चुके हो तुसी कह भी रहे हो कि परमात्मा है परमात्मा दा रस है और वो रस असीं जानिया भी है पर साडा प्रश्न है जे तुसी रस नूं जानिया है ते फिर बयान करो रस हुंदा किवें दा है ते कल दे सलोक विच आपने सुनिया सी किवें बयान करिए की कहिए कि वो रस शहद वर्गा है रस मिश्री वर्गा है रस गुड़ वर्गा है रस दुध वर्गा है किस वर्गा रस है। परमात्मा दे रस दी ते कोई उदाहरण नहीं वो अपनी उदाहरण आप है। भगत कबीर साहब जी दे उत्ते प्रश्न होया कि बोलो रस पाया है ते दसो बोल के दसो रस किस तरह दा है ते हुण भगत जी उन्हां लोकां दे सामने चुप हो जांदे ने। अखीरी लोकां वल्लों बोशार करके प्रश्न आ रहे ने तड़ा तड़ प्रश्न आ रहे ने ते कबीर साहब अखीरी बोले ने कहन लगे कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। कहन लगे सजनो अगर एक गुंगे मनुख नूं आप मठियाई खाण वास्ते दियो चंगा स्वादला भोजन खाण वास्ते पेश करो ते भोजन खवान तो बाद उहदे उत्ते प्रश्न करो भी बोल के दस इहदा रस किस तरह दा है। हुण उस भोजन दा रस गुंगे नूं आया ते है ते आया भी जरूर इहदे विच कोई शक नहीं क्योंकि गुंगे दे चेहरे दे उत्ते जिहड़े खुशी दे चिन्ह प्रगट होए उन्हां चिन्हां तों समझ आ रही है निशानियां तों समझ आ रही है इहनूं भोजन दा रस मिलिया है। पर जे आप चाहो कि गुंगा मनुख जुबान दे नाल बोल के बयान करे कि रस किस तरह दा हुंदा है ते गुंगे दे बस विच नहीं है। रब जी दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं जद कोई रब्बी रस दे नाल भरदा है ते सच जाणिआ जे उहदे पास उस रस नूं पेश करन लग्गिआं लफज रहिंदे नहीं है। अगर वह रस लफजां विच पेश हो जांदा है ते फिर उहने रस नूं पाया ही नहीं है। मैं उदाहरण दित्ती सी लफजां दे अंदर ते खाधे हुए भोजन दा रस परोस के तुसी दूजे दे सामने पेश करना चाहो नहीं हुंदा। आप किधरे दूर दराडे सैर सपाटा करन वास्ते चले जांदे हो पिकनिक ते चले जांदे हो कोई चंगी थां वेखदे हो रमणीक जगह वेखदे हो समुंदर दा किनारा है सवेर दा समा है घा दे उत्ते त्रेल पई नजर आ रही है लहरां बणदियां मिटदियां नजर आ रहियां ने सूरज दियां किरणां सुनहरी रंग दियां बड़ा मनमोहना जिहा दृश्य पैदा कर रहियां ने इह सारा रस घूमण फिरन दा सूबा दा नजारा तुहानूं मिलिआ है उह नजारा लफजां दे राहीं परोस के आप अपने किसे सज्जन मित्र दे सामने बयान करना चाहो तो कि सज्जन नूं लफजां दे राहीं उह नजारा दिस जाए। जो रस तुसीं पाया है उह रस तुहाडे सुणन वाले श्रोते नूं आ जाएगा
नहीं मिलेगा। आम दुनियावी चीजां दा रस लफजां दे राही परोसिया नहीं जांदा, परमात्मा दा रस ते बिल्कुल ही नहीं परोसिया जांदा। परमात्मा जानन दा विशा है, परमात्मा नूं जिन्ने थोड़ा बहुत जानिया है उन्हें रस नूं मानिया है, जिन्हें नहीं जानिया उहदे अंदर प्रश्न ही पैदा हुंदा रहिंदा है, परमात्मा भी नहीं परमात्मा दा रस भी नहीं। ये कहावतां ने, ये गल्लां ने, परमात्मा ग्रंथां दे सलोकां विच बंदे, परमात्मा नामी कोई चीज नहीं है। उहदे अंदर इस तरह के बलबले चलते ने, इस तरह के उत्तर प्रश्न उधेड़ गुण उहदे अंदर चलदी है। तो मैरज कर रहा सन लफजां दे भांडे विच परमात्मा दे रस नूं परोस के किसी दे सामने पेश करना बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ही एक लफजां दे बर्तन विच परोसिया जांदा है ते फिर परमात्मा साडे भांडे तो वड्डा नहीं है, साडे बर्तन तो वड्डा नहीं है। जो चीज मेरे भांडे विच आ गई वह भांडे तो वड्डी नहीं है, जो चीज मेरी खोपड़ी विच आ गई मेरी खोपड़ी तो वड्डी नहीं है, जो मेरे लफजां दे बोलन विच आ गया वह मेरे लफजां तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे समझन विच आ गया मेरी समझ तो वड्डा वह किस तरह होया, जो मेरे बोलन विच आ गया मेरे बोलना तो वड्डा वह किस तरह होया। परमात्मा बेअंत है, ना वह खोपड़ी दे प्याले विच आउंदा है मुकम्मल तौर ते समझ विच आउंदा है, ते ना उहदे मिलाप दा रस ही लफजां दे भांडे विच परोसिया जांदा है। उहदा रस भी बर्तन विच आउंदा नहीं है, समाउंदा नहीं है, परमात्मा बेअंती रह जांदा है। असीं उहनूं भांडे दे अंदर परोसन दा यतन करदे हां पर वेखदे हां कि बहुत सारा बर्तन तो बाहर ही पिया है, बेअंत पिया है, था पिया है। गुंगे मनुख दे कोल जुबान ते हुंदी है पर गुंगे मनुख दी जुबान दे कोल ये समर्था नहीं हुंदी कि वह लफजां दे उदेड़ गुण कर सके, लफजां नूं जन्म दे सके और लफजां दे राही किसी नूं कुछ समझा सके। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलदा चलदा मनुख एक अवस्था दे अंदर पहुंच के गुंगे वाली हालात विच हो जांदा है। लोग पुछदे ने रब दे मिलाप दा रस ते उहदे कोल परोसन दा कोई जरिया नहीं हुंदा, किवें पेश करे कि रस इस तरह दा है, लोग कह देंदे ने पागल है। इस तरह ही कबीर साहब दे नाल होया है, लोगों ने पुछया है कि बयान कर रस किस तरह दा है, ते कबीर साहब कहिंदे ने कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है, ते लोगों ने ताड़ी मार दिती झूठ बोलदा है पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, सारिया लोगों ने एक सुर होके कह दिता है कबीर बौरा है, कबीर पागल है, कबीर बौराना। पर कबीर साहब कहिंदे ने कबीर का मरम राम पहचाना, कबीर दे असली भेद नूं ते उहदा राम जानदा है, परमात्मा जानदा है। लोग की जानन कि मैनूं रस मिलिया है ते किस तरह दा मिलिया। गुरबाणी दे अंदर एक होर भी बचन आउंदा है, जे हों जाना आखां नाही कहना कथन ना जाए। जे मैं जान भी जावां परमात्मा तू इस तरह दा है ते आख्या नहीं जांदा। जे हों जाना आखां नाही कहना कथन ना जाए, तू मेरे कहन दे अंदर मेरे कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। जे मैं जान भी लेना कि परमात्मा तू इस तरह दा है, मेरे कहन कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। अज दा इह सलोक भगत फरीद साहब जी ने जो बख्शिया कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा नूं मिला नहीं सकिया, अज मैं मन नूं रब जी दे नेड़े कर नहीं सकिया, मैनूं जो रस रोज रोज कंत परमात्मा दे नाल मिलन तो बाद मिलदा सी, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न तो बाद मिलदा सी, अज ओह रस नहीं मिलिया। भगत फरीद साहब जी दे सलोक दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव इस तरह है। एक होर भी बेनती करदा चला, कदों महान रस मिलदा है, जदों छोटे रस वलीन हो जांदे ने चले जांदे ने, या फिर इस तरह कह लो कि छोटे रस मिलदियां वड्डा रस मिलदियां छोटे रस अपने आप चले जांदे ने। बालपन दे अंदर हर बच्चा खड़ौणियां दे नाल खेडदा है, गुड़ियां पटोलियां दे नाल खेडिया जांदा है, पर जद ओ बाल बालपन दी उम्र नूं छड के जवानी दियां दलहीजां दे उत्ते आण के खड़ा हुंदा है तो की उदों वी उहनूं खड़ौणियां दी लोड़ पैंदी?
ਸਿਆਣਪ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦਮ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖੱਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਛੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਛੁੱਟਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸ਼ੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਕਾਮਨ ਮੈਨੇ ਔਰਤ, ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਹਿਕ ਦਾ ਛੁੜਕਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ ਰਸ ਘੋੜੇ, ਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਰਸ ਸ਼ੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਜ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸ਼ੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਦਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਟਿਕੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਹੋਰ ਭਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਏ, ਉਪਰੋਂ ਹੋਰ ਕਹੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਪਾਵੇਗਾ?
अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा, अंदर समाउन दी ते जगह है ने, अंदर टिकन दी ते जगह है ने। इन्ने रस तेरे अंदर ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं विलीन कर, इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर। इक दिन आएगा ये सारे रस चले जाणगे, परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने, लड्डू जलेब मठियाइयां। मिठे दी गल मैं करनी, उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो। लंगर वरताउण वाला, लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर, तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते तुहाडा मन ते ललचा रहा है, पर नाल इह वी आवाज आ रही है कि इह पदार्थ खाण दे नाल तेरी शुगर वध जाएगी, तेरे तन दा रोग वध जाएगा। बेशक मन चाहुंदा है कि इह चीज मैं खा लवां, पर अपनी बीमारी वल ध्यान करके तुसीं उह चीज लैण तों गुरेज कर देंदे हो, परहेज कर देंदे हो। जलेब पए ने, वरताउण वाला तुहानूं देना चाहुंदा है, तुहाडे मन दी आवाज वी इह कि खा लैणे चाहीदे ने, पर जिवें ध्यान आउंदा है बीमारी वध जाएगी, शुगर वध जाएगी, तुसीं थाल पिछे कर लैंदे हो, नहीं लैंदे। जो रस तुहाडे शरीर नूं माफक नहीं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਅੱਧ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਬਣਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰੋਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ, ਸਹਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਰਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਰਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਜ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਰਸਾ, ਆਣ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਣ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਨੇ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਖੇ ਲਾਥੇ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਾਣ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਖੀਵਾ ਕਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ।
एक बेनती मैं उचेचे तौर ते आप संगतां दे सन्मुख होर रखनी चाहांगा। वो ए है कि जदों आप भोजन छकदे हो उदों नाल दी नाल तुहानू भोजन दे रस दी समझ पै जांदी है। पहला टुकड़ा पहली बुरकी मुख विच पाई ते तुहाडी जुबान रस दी परख करके दस देंदी है, इहदा रस कौड़ा है, रस मिठा है, रस खट्टा है, रस लूना है, रस चटपटा है, रस नमकीना है। तुहाडी जुबान पर कर देंदी इस भोजन दा रस किवें है। इस तरह ते नहीं है ना कि भोजन खाओ अज ते रस बनेगा आने वाले कल नूं, या भोजन खाओ अज ते रस बनेगा एक हफ्ते बाद, वीक बाद, महीने बाद, साल बाद। इस तरह दा नियम ते नहीं है, यह दस्तूर ते नहीं। धर्म की दुनिया के अंदर भी यही दस्तूर है। यह मत सोचो कि मैं बाणी का जाप कर रहा मैनू अज रस नहीं मिले, इहदा रस कल नूं बन जाएगा, नहीं बनेगा। जो हुण करद्या करद्या रस नहीं आया उहदा कल नूं भी रस नहीं बनेगा। गुरबाणी का चिंतन भजन करद्या करद्या रस नालों नाल पैदा होंदा है, नालों नाल उस वक्त। ते जे नालों नाल रस नहीं बनिया उस खाधे भोजन का रस कल नूं भी नहीं बनेगा। साडा मन इस भरम के अंदर है हुण करी चलो इहदा लाभ अगले जन्म मिलेगा। शुरुआत अज तो है, अगर अज पदार्थ का रस नहीं मिलिया कल नूं किवें मिलेगा। तुसी हुण बुरकी मुंह विच पाईए रस हुणे है, जुबान विचों हुण वाहिगुरू कढो रस नालों नाल मिलना चाहिए है। नहीं मिलिया ते समझ लो भोजन सही ढंग दे नाल खाधा नहीं गया। जपजी साहब हुण जपिया है, हुण पढ़िया है, इहदा रस हुणे ही बनना चाहिए है नालों नाल ही। इस भुलेखे विच ना रहो कि मेरा काम पढ़ना है ते रस बनेगा आने वाले कल नूं, हुणे रस नाल नाल बनेगा। अगर नहीं बनिया तो फिर सही ढंग दे नाल जाप होया नहीं है, सही ढंग दे नाल भजन कीता नहीं गया। अगर रस हुणे नहीं बनिया फिर मैं दोबारा उचेचे तौर ते बेनती कर रहा, भोजन खाओ रस नालों नाल बनदा है, भजन करो रस नालों नाल बनदा है। कीर्तन आप अज सुन रहे हो ते अज दे सुने हुए कीर्तन दा रस की कल नूं जाके मिलेगा। कथा तुसी ऐस वक्त बह के दरबार विच सुन रहे हो ते की हुण दी कीती कथा दा रस आउण वाले तीन दिनां बाद बनेगा। अगर तुहानूं रस कथा विचों आ रहा है ते हुणे आ रहा है, नहीं आ रहा ते इहदा रस कल भी नहीं आएगा। अगर कीर्तन सुनदिया सुनदिया हुण रस नहीं बनिया कल नूं नहीं बनेगा। बाणी पढ़द्या पढ़द्या हुण रस नहीं बनिया कल नहीं बनेगा। भजन बंदगी करद्या करद्या रस बनना चाहिए है नालों नाल, नहीं बनिया ते फिर कदी भी नहीं बनेगा। अगर भोजन पक्का होवे, थाल दे अंदर परोसिया होवे, पर प्या होवे साडे तो दूर, ते उस भोजन दा रस जुबान नूं नहीं मिलदा। भावे ओ भोजन किन्ना स्वादला होवे, किन्ना चंगा होवे, पर थाल विच परोसिया है, दूर पिया है, उहदा रस तुहानू की समझ आई कि भोजन खट्टा है, भोजन मिठा है, भोजन कौड़ा है, नहीं जान पाए उहदा रस की। भजन भी अगर मन तो दूर रहा, गुरबाणी मन तो दूर रही, कथा मन तो दूर रही, कीर्तन मन तो दूर रहा, ते दूर पै भोजन दा रस भी नहीं मिलदा, दूर पै भजन दा रस भी नहीं मिलदा। दोबारा मैं इन्हां लफ्ज़ां नूं दोहरा दिया, भोजन जुबान तो, भोजन मुख तो दूर है, ओ भोजन सदा कुछ सवारेगा नहीं जिहड़ा बाहर पिया है, उहदा रस बनेगा।

जिन सिरिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर

जप आदि सच युगाद सच है सच नानक होशी पी सच सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दिना देहो दर्श नानक बलहारी

एक उत्तम पंत सुने हो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राख।